0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011-5916-8231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Get ready to move.
9: It's all about the beats. Wow,
10: FM. You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजा 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेस
6: फुट टैपिंग म्यूजिक.
7: फजा 97.1 एफएम,
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 एफएम एंड डेप.

0: UK. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: You are listening 97.1 FM.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी रब्ता करें 07593।

0: 1506669 मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात।
7: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी।

0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: This is a public service announcement.
4: The station
5: that plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेज
6: फुट टैपिंग म्यूजिक.
7: फजान 97.1 एफएम.

0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंगम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
4: Get ready to move.
5: It's all about the beats.
6: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2.
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शाम

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार

0: सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077।
1: You are listening 97.1 FM.

0: FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
2: ਮੁੰਡਾ ਸਦੂਆਂ ਦਾ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

तो समझाएं सुलझाएं बतलाएं कैसे आप सब लोग कैफ हवालक मांगंग नंगो मागे निवर्तन हम सुगम सुगमानु कैम छे बोंजोर और की हाल चाले मेरा तितवाड़ा बिल्कुल ना परफेक्ट फिट फाट आप सुनाएं उम्मीद वासी के ऊपर वाले से कि जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे बड़ी ही खुशरुनुमा और खुशनुमा जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे जनाब। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का जोर जोर है और 97.1 FM लेकर आया आपके लिए गर्मी का तोड़ सिर्फ सुनने की हद तक जनाब। डेफिनेटली गर्मी का तोड़ भी आपको अनाउंस करेंगे क्या है जनाब। नेशनल हेल्थ सेंटर की जानिब से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है अपकमिंग वीक्स के हवाले से अपकमिंग डेट के हवाले से वो आपके साथ शेयर की जाएगी और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आज नॉटिंघम के लोग कहाँ हैं कैसे हैं और किस हाल में हैं। तो जनाब जनाब इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनाब मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा और आपका राबता रहने का जो मेन तरीकाकार है वो क्या है जी। 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप डायल करेंगे राबता करेंगे हमसे और शामिल हो जाएंगे हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए हमारे लाइव प्रोग्राम में। ट्रांसमिशंस के बारे में आपको कैसा लगा वो आप बताएंगे। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के हवाले से आपके क्या विचार हैं, क्या सवालात हैं, क्या कुछ ऐसी उलझने हैं, कुछ ऐसी साख्तें हैं जो आप हमेशा सोचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं लेकिन फिर भी लोग आपका साथ नहीं देते। अरे क्यों नहीं देते, मैं हूं ना आपके साथ। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस में से निकल के और उसके बाद कामयाबी को गले लगा के कहते हैं ना कामयाबी फिर चक मार के आपके कदम चूमती है। तो इन्हीं को जनाब अक्सर इन्हीं को जनाब कारीगर भी कहा जाता है, इनको शिकारी भी कहा जाता है, इनको खिलाड़ी भी कहा जाता है। तो जनाब गपशप हमारी साथ साथ चलती रही कि बहुत सारे आपको पता है जैसा कि हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट हैं, ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट कोट ऑफ द डे शामिल की जाती है। आपको ये बताता चलूँ कि जनाब कोट ऑफ डे बताने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज वीकेंड ख़त्म हो चुका है जनाब, वीक का स्टार्ट है नए बुलबुले के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंगों के साथ, नई तर्जुमानों के साथ, उमंगों की तर्जुमान जुमानी के साथ आपने अपना दिन शुरू करना है। और जो लोग इस वक्त परेशान हैं या किसी दुविधा में हैं या कुछ ऐसी बात जो आपको शायद समझ नहीं आ पा रही तो आपसे गुजारिश है कि फिर शेयर कीजिए ना 01157100971 पे मैसेज करके। जो लोग इस वक्त अभी तक सो रहे हैं आपसे गुजारिश है कि उठ जाइए, कहते हैं जो सोता है वो खोता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें खो देता है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज़ योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग।

बिल्कुल जनाब, कभी अलविदा ना कहना, जी अलविदा ना कहने के लिए मैं हूँ आपके साथ 97.1 एफएम के अलावा, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के अलावा, एफएम के अलावा आप हमें कहाँ सुन सकते हैं? आप हमें सुन सकते हैं डैप पे फजा के नाम से सर्च करने के बाद। अलावा जी आपको बताते चलूँ कि आपको हमारी ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे आप रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल, और एक गोल्डन कलर के साथ लिखा हुआ पर्पल बैकग्राउंड के साथ फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी, समातों की नजर आपको कहते हुए सुबह खैर एंड गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

तो जनाब आपको बताता चलूं कि आपको समेटना पड़ेगा अपने आप को आज के दिन के हवाले से। बहुत सारी मुश्किलात भी, बहुत सारे टारगेट्स भी होंगे, क्योंकि वीक का स्टार्ट है। जो लोग सेल्स से बिलोंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या किसी ऐसी जॉब को अपने सामने रखते हैं जो बड़ी डिफरेंट सी, डिफ़िकल्ट सी और मार्केटिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट सी और बड़ी ना थोड़ी सी ना, वो कहते हैं ना कि हल्की सी दिमाग पाने वाली जॉब है। तो ऐसी जितनी भी जॉब्स हैं हमारे पास यूके में, हमारे नॉटिंघमशायर में, मोस्टली लोग जो हम शिफ्ट्स लगाते हैं, कैरियर का काम करते हैं या उसके अलावा आप ये कह लें कि डिलीवरीज का काम होता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में हम साउथ एशियन कम्युनिटीज स्पेशली कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जी, जो यहाँ की साउथ एशियन कम्युनिटी है यार, बड़े कमार के, बड़े प्यारे और बड़े ज़बरदस्त से लोग हैं। जैसा कि आपने देखा कि जनाब वीकेंड पे एक्सेल से नवाब में जनाब जश्न आज़ादी पाकिस्तान का खूबसूरत सा एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम हुआ जेड के इवेंट्स और रेडियो फ़ज़ा के ताउन से, और भरपूर तरीके से जनाब सनम मारवी, उसके बाद हसी भेस एंड जुकी, ये सब मौजूद थे और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इन सब की। आप लोगों ने इंजॉय किया, इसके बारे में डेफिनेटली बताइएगा। अगर नहीं इंजॉय कर सके तो इसकी रीज़न क्या थी। लेकिन अगर आप लोग मज़ीद ऐसे जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें शामिल होना चाहते हैं, तो फिर काफ़ी देर पहले पब्लिसिटी शुरू हो जाती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत एंड पे रब्ता करते हैं और उसके बाद पूछते हैं जी एंट्री कैसी है, ये है वो है। तो जनाब थोड़ा सा अपडेट रहिए करिए। अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट radiofaza.co.uk। और इसके अलावा जनाब जब आप ये विज़िट कर लेंगे तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके पास रह जाएगी वो अपडेट होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाएगी वो आपकी याद दहानी रह जाएगी। आप लोग अपने आप को बड़े इजीली मैनेज कर सकेंगे और मैनेज करने के साथ साथ आपको मैं आज की कोट ऑफ द डे बता देता हूँ। आप कोट ऑफ द डे बड़ी ज़बरदस्ती है आज की, और कोट ऑफ द डे के हवाले से

जी ना, मैं बात कर रहा था कोट ऑफ द डे के हवाले से, और बड़ी जबरदस्त कोट ऑफ द डे मेरे पास जो मौजूद है। आज का टॉपिक भी बड़ा डिफरेंट है जी। आज का टॉपिक है जीत। सक्सेस कामयाबी को कहते हैं जीत, यानी जीतना। बेसिकली विनिंगशिप क्या होती है, विनर्स कौन से लोग होते हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोट ऑफ द डे भी इस चीज़ के हवाले से है कि जनाब, जीत हमेशा सब्र मांगती है। जिसने जीतना है उसने सब्र, पेशेंट। अब इन दोनों का क्या ताल्लुक है आपस में, क्या मेल ताल है, क्या ताल और भाव है इनका, और क्या इनका आपस में एक जॉइंट फंक्शन है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बकायदा जनाब अपनी विशेष या कोई टिप्पणी आपके पास मौजूद है तो फिर विशेष टिप्पणी के साथ हाजिर होइए मेरे प्रोग्राम में 01157100971। इस टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट जो मेरे पास आएगा उस सेगमेंट वर्ड जबरदस्त है, पर्सनैलिटी ऑफ द डे कौन होगा, बड़ी जबरदस्त सिंगर है, वोका वोका जी जी बिल्कुल हाइप सोन लाइफ शकीरा को जनाब आज हम डिस्कस करेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी। बज़ाहिर तो लोगों को बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि जनाब हर फीफा वर्ल्ड कप में जनाब ज़बरदस्त से गाने, हिट सॉन्ग्स, हर चीज़, लेकिन इसके पीछे क्या स्ट्रगल है, क्या हिस्ट्री है, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कुछ NHS की जानिब से हीट को लेके कुछ बचाव की तदाबीर हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी इसी वक्त।

जी तो लिसनर्स वेलकम किए देता हूँ समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 FM पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। बात हम कर रहे थे टॉपिक की, लेकिन बीच में कुछ मैसेजेस हैं जो पढ़ने इम्पोर्टेंट थे, और वो मैसेजेस पढ़ते पढ़ते इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप लोग भी मेरे साथ हैं। 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पर आप मुझसे रब्ता करते हैं, और नंबर रब्ता करने के साथ साथ आप मुझे ये बताते हैं या आप मुझे ये पहचान बताते हैं अपनी कि आप कहाँ से, अपना पोस्टल कोड, अपना नाम लाजमी शेयर कीजिए। टॉपिक जो है वो जीत है, और उसके साथ जो कोट ऑफ द डे है कि जीत हमेशा सब्र मांगती है, पेशेंस मांगती है। इसके हवाले से डिस्कशन में रहेंगे, लेकिन आपको ये बताते चलेंगे जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन है उनके बारे में आप जान कैसे सकते हैं। उसके बारे में जानने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट whichisradiofaza.co.uk। के अलावा हम अजीम हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको आप विजिट कर सकते हैं, नाम रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल्स के नाम से। ये सारे जनाब जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इसके अलावा यूट्यूब पे जितनी भी हमारी पॉडकास्ट की जो सेशंस हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो जनाब ये विजिट कीजिए, पोस्टर्स हमारे अपलोड होते हैं जनाब, उसके बाद एडवर्ट्स भी अपलोड होते हैं। आप लोग भी अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप रहेंगे हमारे साथ साथ। सो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना कि स्टे ट्यून फजा 97.1 FM, इंजॉय कीजिए अपने दिन को मजीद मोटिवेट रखने के लिए और मजीद एक्यूरेट रखने के लिए। रेडियो 97.1 FM ट्यून करने का भी शुक्रिया।

0: जी तो लिसनर्स, बात अगर हम करें जीत के हवाले से, टॉपिक है हमारा जीत। जीत हमेशा सब्र मांगती है। सब्र कैसा? सब्र तो जनाब ये वो चीज है जिसके बारे में अक्सर हमने ना इंग्लिश में सुना है कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। उस कछुए की अगर बात की जाए कि जनाब जो कछुआ बहुत ही आहिस्ता चलने के बावजूद भी खरगोश से रेस जीत गया था। बचपन से कहानी हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती कि वो कछुआ रेस जीत गया, क्या उसके बाद दोबारा कोई रेस हुई? क्या उसके बाद दोबारा कोई लोग या दोबारा उस खरगोश ने यह हिम्मत ना जुटाई कि अब मैं सोऊंगा नहीं और सोना बिल्कुल मेरे बस में नहीं है, मेरे वश में नहीं है, मैं सोऊंगा नहीं, और उसके बाद आओ फिर से रेस करते हैं। फिर दोबारा उसके साथ क्या हुआ? वो फिर जीता कैसे? सब्र किसने किया? खरगोश ने, कछुए ने? बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टोरी को साथ लेके हल्का हल्का चलेंगे, आप लोगों के विचार भी शामिल करेंगे जनाब व्हाट्सएप नंबर के जरिए 01157100971। अलावा जी आपकी जो इम्पोर्टेंट राय है वो भी शामिल की जाएगी डेफिनेटली, और इसके अलावा जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होगा पर्सनैलिटी ऑफ द डे, शकीरा को लेके आएंगे जनाब आज कि उनकी जो जिंदगी है वो कैसे जोखम में से गुजरी है। इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप बने रहेंगे 97.1 FM बेस।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH Solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपके साथ आपका मेजबान आसिर खान। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अदा कर रहे हैं, उसे खुश आमदीद कहते हुए स्वागतम स्वागतम स्वागतम वेलकम उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप से याद आया कि आप ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जनाब गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहाँ जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल और फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर का माइक आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिजा उस पर लिखा हुआ होगा और फिर आप गेट भी कर सकते हैं जनाब, डेफिनेटली मैक और जो एंड्रॉयड यूज़ करें उन यूज़र्स के लिए। उसके बाद आप जनाब जब प्ले करेंगे गेट करेंगे, उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो यही आवाज़ ठहरेगी आपकी स्मार्ट नज़र। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए

तो जनाब डिस्कशन में हमारी जो साथ साथ चीजें चल रही थी, आपके मैसेजेस भी हम डेफिनेटली प्ले करेंगे या पढ़ेंगे। 01157109711 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारी लाइव ट्रांसमिशन में। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम की।

बिल्कुल जनाब, हिंदी और इंग्लिश का जबरदस्त मैशअप है जनाब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने इसको ढूंढा और बहुत टाइम लगा कि इसको ढूंढने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपके साथ ये प्ले किया जाए। जिसने बुलाया वो हमारे सामने आएगा। अरे टॉपिक को क्लोज करते हैं, उसके बाद ट्रैक्स आपके साथ रहेंगे। तो ना टॉपिक जीत का है और इसके अलावा शकीरा की जो मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी आपको बताई कि किस तरह सिंगिंग और डांसिंग का शौक रखने के बाद जस्ट स्टार्टेड द डांसिंग एंड सिंस सिंगिंग सिंस व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड ओनली।

तो सब कुछ होने के बाद जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता ना, जब मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि इवन के 8 या 10 साल की बच्ची के जो माँ बाप हैं वो बिल्कुल, यानी एक बड़े लॉ से गुजरे उसके बाद छोटे भाई की डेथ जस्ट व्हेन ही वाज 2 ईयर्स ओल्ड, इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। अगर हम अपने हालात को देखें, कंपेयर करें, हो सकता है हमारे कुछ ऐसे लिसनर्स होंगे, कुछ ऐसे हमारे रिलेटिव्स होंगे, कुछ ऐसे हमारी कम्युनिटी के लोग होंगे, साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग होंगे हमारे, जिनके हालात इससे भी ज़्यादा गंभीरता वाले हों, ज़्यादा मुश्किल वाले हों। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हमने एक सबक लेना है, एक सबक लेना है, एक लेसन लेना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फेमस हो चुके हैं, जो लेजेंड बन चुके हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं। और अक्सर मैं कहता हूँ ना कि मिसालें दी जाती हैं, यादें कभी नहीं रहती, ना मिसालें रहती हैं, मिसालें कायम रहती हैं। मिसाल बनिए और मुआशरे में आपकी मिसाल भी डेफिनेटली दी जाएगी।

बात पूरी करने का मकसद ये था कि जनाब जीत के लिए पेशेंस बड़ा जरूरी है, और अगर आप निराश हो चुके अपनी जिंदगी में या कुछ मुश्किलात आपके सामने ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टफ हो चुकी हैं या आपसे कोई मसाइल ऐसे हैं जो हल

फिर सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए और कोशिश कीजिए कि जितना आप परेशान होंगे इतनी परेशानियों को दावत देंगे वो मजीद आपको टेंस करेंगे। आप अपनी यादों में खो के अपने जो करंट काम है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैं नहीं कर पा रहा। कुछ परेशानी, कुछ टेंशन, कुछ गंभीरताएं ऐसी होती हैं जो इंसान अपने सर पे सवार कर लेता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उन गंभीरताओं को अपने ऊपर से उतार के फेंकिए जो सामने आपके पास वक्ती तौर पर एक ज़ाहिरन चीज़ है। उस चीज़ को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए, उस चीज़ को बाकायदा एक अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए और उसके बाद उस परेशानी से निकलने के बाद कोशिश कीजिए कि अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो उस फाइनेंशियल इशू को आप हल कैसे करेंगे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो हेलो हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल एक्साइटिंग प्लस चार्मिंग मॉर्निंग सभी सुनने वाले लिसनर्स के लिए। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट एंड दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। जैसे कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन और एंड देन मिलता है एंटरटेनमेंट का फुल डोज। सो पूरी कोशिश तो यही की जाती है कि अब से लेके ठीक दो घंटे हम आपकी ज़िंदगी के लिए बना दें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मीनिंगफुल और साथ ही साथ मोटिवेटेड। सो लिसनर्स, अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज़ नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज़ इस खूबसूरत से शो के साथ। सो वेल लिसनर्स, सुस्ती को छोड़ दीजिए, अगर आप हैं अभी तक सुस्ती और काहली में मुब्तला या फिर आप इसी कश्मकश में हैं कि आज का ये दिन या फिर आज का ये वीक किस तरह से शुरू किया जाए, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको ज़रूरत है कि सबसे पहले आप अपनी सुस्ती को छोड़ दीजिए, वेकअप उठिए और बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा इंजॉय करें विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। और अगले 2 से 3 मिनट में आप साथ ही साथ कॉफ़ी को एंजॉय करें या फिर चाय की सिप लें और अपने माइंड में प्लान कर लीजिए कि किस तरह से आप आज के इस दिन को करने वाले हैं स्पेंड, या फिर आज के वीक के हवाले से हैं आपकी क्या डेडिकेशन प्लस क्या एम्बिशन। सो वेल लिसनर्स, अगर आपको इस सब प्लानिंग में आ रही है कोई भी किसी किस्म की मुश्किल या आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े से पजल हो रहे हैं या फिर आपको हैं बहुत सारे डाउट्स, सो डोंट वरी, हम हैं ना, हम मिलकर आपको देंगे एक बहुत ही अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस। सो अगर आपको कोई भी चीज़ बॉदर कर रही है या आपको नहीं समझ आ रहा कि आप चीज़ों को किस तरह से शुरू करें, तो आइए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, इंतज़ार है किस बात का, 01157100971 ये है मेरा और आपका रबते का नंबर, यानी कि इट्स द ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऑफ आवर रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब।

सो ना सिर्फ आप इस नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी सभी दिल की बातें भी हमसे शेयर कर सकते हैं। वो तमाम तरह बातें जो आप सोच रहे हैं या आपके माइंड में चल रही हैं या कुछ ऐसा जो कर रहा है आपको बॉदर, या आप चाहते हैं कि आप किसी से अपने दिल का हाल शेयर करें या फिर कोई ऐसा जो आपको सुने और आपको समझे। सो इन सभी बातों के लिए हम और आप रहेंगे साथ साथ और मैं यही मौजूद हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सुनूँ कि आप क्या सोच रहे हैं और इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है।

सोचे इस नंबर के थ्रू ना सिर्फ आप हमसे बात कर सकते हैं बल्कि आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम दीवा डायलॉग को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो आप सुनना चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, या फिर आप अपने किसी चाहने वाले को कोई भी अच्छा सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं। सो डियर लिसनर्स, इन सभी बातों के लिए आपको बस इतना करना है कि इस नंबर को डायल करना है। डायल करने के साथ साथ आपको अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं बस लिखकर भेज देना है, और हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि वो सभी चीज़ें जो आप सुनना चाहते हैं वही हम शो में शामिल करें, और म्यूज़िक भी वही जो आपको पसंद हो।

साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो आप हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा।

से, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो कि रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेट करती है आप जान सकते हैं. सो आपको ये भी पता चल सकता है थ्रू दिस वेबसाइट के कौन से दिन कौन सा शो है आने वाला, और जितने भी रेडियो फजा 97.1 FM पर आने वाले हैं लेटेस्ट प्रोग्राम, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के थ्रू. सो वेल लिसनर्स, इस वेबसाइट के थ्रू आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा. सो द लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? सो इस ट्रैक से हमने प्रोग्राम का तो कर लिया है बाकायदा तौर पर आगाज, अब से बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। सो वेल लिसनर्स, अगर अभी तक आपने कर लिया है ब्रेकफास्ट सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने नहीं किया ब्रेकफास्ट सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द डे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा एनर्जेटिक प्लस हेल्दी डे स्टार्ट करें सो यू हैव टू नीड अ गुड ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट से ना सिर्फ आपको आपकी भूख ख़त्म होती है बल्कि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको पूरा दिन रखती है चाको चौबंद। सो इस एनर्जी के थ्रू आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, बाहर की दुनिया को फेस कर सकते हैं और अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और जहाँ कहीं भी आप डेली बेसिस पर जाते हैं कामकाज करते हैं वो तमाम तर कामकाज करने में भी आपको मदद मिल सकती है।

सो वेल लिसनर्स, इसी तरह से अब हम बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जिन्होंने अभी अभी अपने दिन का आगाज कर लिया है और अब वो घर से बाहर निकल चुके हैं. सो अगर आप भी उन्हीं सब लिसनर्स में से हैं जो कि घर से बाहर निकल चुके हैं अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ हैं रवा दवा, सो अगर आप हैं रस्ते में या पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब,

0: marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM एंड ऐप पे।

लिसनर्स, ये शॉर्ट से इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है. सो अगर आपने भी अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तो बताइएगा आप इस पर क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं. सो वेल लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक. ये ट्रैक मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि जहाँ भी बात की जाए इंग्लिश गानों की तो ये गाना टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी फेवरेटीज में आता है. सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक के उस पार फिर करते हैं आज के वीक के हवाले से प्लानिंग.

वेल लिसनर्स, आइए बात करते हैं इस नए वीक के हवाले से। सो मंडे को लेकर बहुत सारे लोगों का बहुत डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होता है। आइए ज़रा आज हम डिफरेंट तरह के परसेप्शंस को डिस्कस करते हैं। सो बहुत से लोग मंडे से डरते हैं, कहते हैं ओह फिर से वही काम, फिर से वही रूटीन और फिर से वही हैक्टिक सब कुछ। तो वहीं अगर हम दूसरी जानिब देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि ओह अगेन वाओ इट्स द न्यू टाइम, इट्स द न्यू बिगिनिंग। तो अब फाइनली हम कुछ नया करेंगे, कुछ मोटिवेशनल करेंगे या फिर कुछ ऐसा जो हम लास्ट वीक ना कर सके। सो ये दो तरह की कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो वेल लिसनर्स, आप सभी में से आप लोगों का ताल्लुक किस कैटेगरी से है, डू लेट मी नो 0115710097। हाँ तो लिसनर्स, बात तो फिर यही है। सोचिए अगर हर दिन एक जैसा होता तो जिंदगी कितनी बोरिंग होती। सो वेल अगर आपको हर दिन काम करना पड़े सो वो सभी लोग जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं फॉर द बिगनिंग ऑफ अ न्यू मंडे, वो लोग भी बोर हो जाएं। और अगर हर दिन आराम करना पड़े तो वो सभी लोग जो ऐसा समझते हैं कि दोबारा से मंडे आ गए या फिर हमें दोबारा से करने पड़ेंगे बहुत सारे काम, वो लोग भी बोर हो जाएं। सो इसीलिए नया हफ्ता एक नया चांस अपने साथ लेकर आता है। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, नया हफ्ता किसी पुरानी गलती को ठीक करने और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका होता है। सो लिसनर्स, अगर पिछले हफ्ते कोई काम आपका अधूरा रह गया हो या फिर आपको करना हो कोई टारगेट अचीव, तो आज का दिन आपको एक क्लीन स्टेट दे रहा है, यानी कि एक नई शुरुआत का मौका। इसीलिए आज का दिन आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को आपने करनी है बहुत सारी प्लानिंग आज के दिन के हवाले से, प्लानिंग अगले दिन के हवाले से, या फिर आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि आपने इस पूरे वीक में क्या काम अचीव करना है।

सो किस तरह से आपने आज के दिन का आगाज करना है, आज रास्ते में चलते हुए या ऑफिस में इंटर होते हुए आपने सबसे पहले तो चेहरे पे रखनी है एक बड़ी सी मुस्कान और साथ ही साथ लेकर जानी है अपने साथ एक रद पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पूरा हफ्ता ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा और आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी लगेगी। वेल, दुनिया में जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी काम होते हैं, हर एक बात का काम का दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड द सेकेंड इज़ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो बाज़ुकात क्या करते हैं हम लोग, हम हमेशा हर बात का मनफी पहलू पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा फलाने हमसे ये बात की तो इट मीन्स कि इट्स द नेगेटिव, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा एंड ब्ला ब्ला। इस तरह की बहुत सारी थॉट्स होती हैं जो कि अ पिंच ऑफ अ सेकेंड हम सबके माइंड्स में आती हैं।

लिसनर्स, आज के दिन के लिए आप सभी का क्या टास्क है? सो आज के दिन के हवाले से आपका टास्क ये है कि आपने इस मंडे को बनाना है द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव प्लस एनर्जेटिक मंडे, यानी कि ये जो तमाम तरह नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो कि हर बात के आगाज़ में हम सभी के माइंड में आती हैं, आपने इनको बिल्कुल भी अपने माइंड में आने नहीं देना और बिल्कुल भी इनको जगह नहीं देनी। तभी आपका दिन पॉजिटिव गुजरेगा, तभी आपका वीक पॉजिटिव गुजरेगा। और कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना, क्योंकि मेहनत करना इट्सेल्फ बहुत अच्छी बात होती है। और ये तो लोग होते हैं ना जो समझते हैं कि मंडे तो बहुत बुरा होता है क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो लोग सुस्ती और काहली में हो चुके होते हैं मुब्तला। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, तरक्की हासिल करें और अपने ख्वाबों के गिर्द घूमें, सो उसके लिए आपको बिल्कुल भी सुस्ती और काहली में मुब्तला नहीं होना और ऐसे लोगों से भी ज़रा बच के रहना है जो कि सुस्ती और काहली में मुब्तला होते हैं। वेल लिसनर्स, अभी तक आप सब ने तो आज के दिन की प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या आपको चाहिए कोई भी अच्छी से पीस ऑफ एडवाइस, तो 01157100971 है आपका और मेरा रابطे का नंबर। सो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। वेल, हो सकता है कि मैं आपको कोई भी अच्छी से पीस ऑफ एडवाइस दे दूँ। वेल, ये तो हो गई आज की मंडे के हवाले से डिस्कशन। अब जरा वक्त आया है शो में एक अदद म्यूजिकल ट्रैक सुनने का, तो आप बताइए कि आपको किस तरह के ट्रैक्स सुनना पसंद है। वेल, सोच रही हूँ कोई बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक लगाऊँ, कोई ऐसा ट्रैक जो कि हमारे लिसनर सुन कर कहें वाओ क्या ट्रैक है। सो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रैक पसंद है। वेल, पूरी कोशिश यही की जाएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम शो में वही गाने शामिल करें जो कि हमारे लिसनर सुनना चाहते हैं।

लिसनर्स, फिलहाल के लिए तो मैं आप सभी से अपना फेवरेट साउंड ट्रैक शेयर करने जा रही हूँ, तो सुन के बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड देन फिर इस ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और इसी तरह से गपशप का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।

वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? सो पर्सनली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, और कुछ गाने ऐसे होते हैं कि आप जब भी सुनते हो तो आप उसी नॉस्टैल्जिक में वापस चले जाते हो. सो इस गाने के साथ भी कुछ इसी तरह की मेरी मेमोरीज जुड़ी हैं. आज भी जब भी मैं ये साउंड ट्रैक सुनती हूँ तो वापस से उसी इरा में चली जाती हूँ. तो वेल लिसनर्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप कोई स्पेसिफिकली सॉन्ग सुने, कोई स्पेसिफिक चीज़ देखें, या फिर कोई स्पेसिफिक परफ्यूम की वजह से आप अपने किसी पास्ट इरा में चले जाएं जहां आपकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी और आप एक बहुत अलग सी ज़िंदगी जी रहे थे. सो कुछ इसी तरह से होता है मेरे साथ भी. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी हमें बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू. वेल लिसनर्स, बहुत बातचीत कर ली आज के दिन के हवाले से, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो हमारा मोटिवेशनल सेगमेंट है, जिसमें हम बात करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की. साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे कोट्स जो कि ना सिर्फ आपके दिन को बदल देते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव किस्म की तब्दीली लेकर आते हैं. कुछ इसी तरह से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही मोटिवेशनल कोट. सो आज का जो हमारा फर्स्ट कोट है, ठीक है, ये फोकस करता है लाइफ के ऊपर और साथ ही साथ डिफरेंट तरह का इसका पर्सपेक्टिव है. और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोट इज कि ये कोट जे के रोलिंग ने लिखा है, जो कि हैं एक फेमस ऑथर. ना सिर्फ फेमस ऑथर बल्कि अगर मैं आपसे शेयर करूँ कि ये किस सीरीज के ऑथर हैं तो यू गाइज आर एक्साइटेड. सो बेसिकली ये वो ऑथर हैं जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी फेमस सीरीज को लिखा है. सो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मोटिवेशनल कोट किस कदर पावरफुल होगा. सो बेसिकली हमारा कोट ये कहता है कि इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ कवरेज टू स्टैंड अप टू योर एनिमीज बट इवन मोर टू स्टैंड अप टू योर फ्रेंड्स. सो वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, सख्त चाहिए होती है कि हम खड़े हो सकें उन लोगों के खिलाफ जो कि हैं हमारे दुश्मन. लेकिन बाज़ुकात समटाइम्स लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इरा या फिर ऐसे डायनामिक्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें खड़ा होना पड़ता है उन लोगों के ऑपोजिट जो कभी हमारे दिल के बहुत करीब होते थे, या फिर हम ऐसे लोग जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं. सो बेसिकली ये कोट जो है वो हाईलाइट कर रहा है अल्टीमेट टेस्ट ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी को इन डेली लाइफ. सो ये कोट हमें ये कहता है कि इंसान को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और सख्त चाहिए होती है ज़िंदगी को स्पेंड करने के लिए, क्योंकि समटाइम्स हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और फॉर एवर तो कुछ भी नहीं रहता. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा से चीज़ें एक जैसी रहें, तो जब चीज़ें उस तरह से नहीं रहती तो हिम्मत हार जाते हैं. सो आपको हिम्मत नहीं हारनी और ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर इस कदर आपको सख्त चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता. सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया, क्योंकि इस कोर्ट में भी बात हो रही थी फ्रेंड्स के हवाले से. सो व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, सो उस टाइम पर मेरी एक अदद फ्रेंड हुआ करती थी जो कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे. आई नो मैं उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, आई डोंट थिंक सो कि वो भी मुझे अपना अच्छा दोस्त समझती थी या नहीं, लेकिन मैं उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी. सो आफ्टर सम टाइम्स मुझसे एक मिस्टेक हो गई. सो जिस तरह से उसने मुझसे दोस्ती ख़त्म की या फिर जिस तरह से उसका एटीट्यूड सडनली चेंज हुआ, शी मेड मी रियलाइज के लोग जिस तरह से हमारे सामने दिखाई दे रहे होते हैं लोग असल में उस तरह से नहीं होते. हमारा एक परसेप्शन जो एक अच्छा परसेप्शन बन जाता है लोगों को लेकर, रियलिटी उससे थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अपोजिट होती है. सो हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ कि एक लाइफ लेसन मिला मुझे कि डू नॉट ट्रस्ट somebody more than your own self. So दूसरों पर कभी भी खुद ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी खुद को किसी के साथ अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है ना कि अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे हो, काइंड हो, पोलाइट हो, तो इट मीन्स कि दूसरा भी आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, काइंड रहेगा, पोलाइट. लेकिन ऐसा नहीं होता. समटाइम्स आप अपना 100% किसी को देते हो बट स्टिल यू डोंट रिसीव 10%.
سو اس طرح کے سچویشنس کے لیے ہی ہمارے آتھر نے کہا ہے کہ زندگی میں بہت ہمت سکت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے آگے کھڑے ہو سکے جو کہ آپ کے دشمن ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمت اور سکت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں جو کہ آپ کے دوست ہیں, آپ کے قریبی ہیں. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ دکھ کوئی دوسرا باہر کا انسان نہیں پہنچا سکتا, سب سے زیادہ آپ کو ہرٹ بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں آپ یہ اپرچونیٹی دیتے ہیں یا جنہیں آپ اپنے دل کے بہت قریب رکھتے ہیں. سو ویل لسنرز, کیسا لگا آپ کو آج کا فرسٹ موٹیویشنل انسپریشنل کوٹ؟ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا زندگی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ ڈیلی بیسس پر میں جتنے بھی آپ سے موٹیویشنل کوٹس شیئر کرتی ہوں وہ تمام تر کوٹس ریلیٹ کرتے ہیں موٹیویشن سے, آپ کے کیریئر سے, آپ کے گول سے, یا پھر زندگی میں کچھ کر دکھانے کے. لیکن میں نے سوچا کہ آج ہم کچھ اس طرح کے کوٹ شیئر کرتے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی بیسس کی روزمرہ کی عام زندگی سے ریلیٹ کریں. سو کیسا لگا آپ کو یہ کوٹس, یہ تو آپ ہمیں اپنے رائے کے تھرو بتا سکتے ہیں ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر. لیکن فی الحال ابھی شو میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. آئی نو ڈسکشن کرتے کرتے, گفتگو کرتے کرتے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ دل تو بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کمرشل بریک کی جانب بڑھا جائے, لیکن چونکہ ضروری ہے تو ہمیں جانا ہوگا. سو ویل لسنرز, لیتے ہیں ایک عدد شارٹ بریک, آپ سے ملاقات ہوتی ہے کمرشل بریک کے اس پر. تب تک کے لیے آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں, بندے رہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک.

0: It's commercial time.
1: ओखाना काय के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तर सुनने वाले लिसनर्स को खुश आमदीद। मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो वज़ा 97.1 एफएम एंड डैब पे। चेयर लिसनर्स, आपको और मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा मुकम्मल। सो इस एक घंटे में हमने इतनी गपशप की कि वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, जिसके हमने आज के दिन के हवाले से बात की, इस वीक के हवाले से बात की और बात की बहुत सारी मोटिवेशन की। सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब शो में लिसनर्स की रिकमेंडेशंस को शामिल किया जाए। सो हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर है जिन्होंने हमें यह एक गाना रिकमेंड किया है। सो हम उनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और शो में शामिल करते हैं ये खूबसूरत ट्रैक। आप सबने भी मुझे सुनकर बताना है कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपकी भी है कोई ऐसी रिकमेंडेशन या आप चाहते हैं कि कोई भी प्यारा सा सॉन्ग आप अपने किसी चाहने वाले को डेडिकेट करें, सो सिंपली उसके लिए आप हमें 01157100971 इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इन प्यारी सी लिसनर का गाना सुनते हैं और मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड कोट की जानिब, जो कि इम्परफेक्शन से रिलेट कर रहा है। जैसा कि हमारी जिंदगियों में बहुत से ऐसे लोग एक्सेस करते हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सब जितने भी हम इंसान हैं, हम सभी में कोई ना कोई इम्परफेक्शन तो एग्जिस्ट करती होती है। अगर कोई इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होगा, सो मे बी उसमें कोई और चीज़ होगी जो उस तरह से कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है कि मुकम्मल ज़ात तो सिर्फ ऊपर वाले की ही होती है। सो जो लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को फैसिनेट करते हैं कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो, तो उन सभी लिसनर्स के लिए ये है हमारा आज का सेकेंड कोट। So our second quote says, mistakes are a part of the dues on pace for a full life. So basically Sophia Loren, एक बहुत ही iconic author plus actress हैं, उन्होंने ये खूबसूरत सा quote लिखा है जो कि ये कहता है, reaffirm करता है failures को और value को life lessons के लिए। ठीक है, कहता ये है कि जो mistakes हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, जो कि हमारे पूरी ज़िंदगी के कर्ज अदा करने में मदद करती हैं। सो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो कि कोई भी काम करे, फर्स्ट अटैम्प्ट करे एंड द परफेक्ट अटैम्प्ट वॉज डन। हर इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं या कुछ न्यू ट्राई करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये काम उस तरह से परफेक्ट नहीं हो रहा जिस तरह से आप चाहते हैं, सो आप खुद को ब्लेम करते हैं, समझते हैं कि एवरीबॉडी इज परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या फिर मुझसे ये काम क्यों नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक इंसान में कोई ना कोई इम्परफेक्शन ज़रूर होती है, लेकिन अच्छे इंसान वही होते हैं जो कि अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसी के साथ ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। सो वेल लिसनर्स, अगर आप में से भी हैं ऐसे बहुत से लोग जो खुद को डिग्रेड करते हैं या फिर खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं जस्ट इस वजह से कि आप ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, सो डोंट वरी, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई भी काम जब भी करती हूँ तो कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं होता। सो वेल लिसनर्स, ये तो मैं आपको इसलिए बता रही थी ताकि आप भी समझे कि आप इस कैटेगरी में अकेले नहीं हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। सो वेल लिसनर्स, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप बार बार ट्राई करती हो बट आपसे नहीं हो पाती, सो उसके लिए आप मुझसे भी पूछ सकते हैं 0115710091, क्योंकि मैं पार्ट टाइम बहुत अच्छी एडवाइस भी देती हूँ एंड हो सकता है कि मेरी एडवाइस से आप के कोई भी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी तो लिसनर्स, मेरे गले को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, आवाज़ में थोड़ी सी हल्की हल्की डिफरेंट महसूस हो रही है, तो कोई बात नहीं, आपको ये बोरिंग सी आवाज़ थोड़ी देर झेलनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक शो में शामिल करते हैं जो कि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने रिकमेंड किया है। अच्छा, इन लिसनर की खास बात यह है कि ये जब भी हमें टेक्स्ट करती हैं तो ये स्पेसिफिकली एक ही गाना टेक्स्ट करती हैं, कहती हैं कि ये गाना प्ले करें। आई थिंक सो, लगता है कि इनको ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो क्यों नहीं जी, ज़रूर हम ज़रूर शो में शामिल करेंगे इस ट्रैक को। सो शामिल करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को, और ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और गपशप का सिलसिला तो फिर साथ साथ चलता ही रहता है।

लिसनर्स, काफ़ी दिन हो गए मैं सोच रही थी कि आप सभी से कोई भी खूबसूरत सा बुक रिव्यू नहीं शेयर किया, तो आइए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी बुक का रिव्यू। आई नो ये बुक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आप में से सभी लोगों ने या फिर मोस्टली लोगों ने जो कि बुक लवर्स हैं ये बुक ज़रूर रीड की होगी, लेकिन जिन लोगों ने ये बुक रीड नहीं की उन सभी के लिए आज मैं शेयर करती हूँ इसका खूबसूरत सा रिव्यू और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि इस किताब की कौन सी बातें मुझे अच्छी लगी कौन सी नहीं और क्या आपको इस बुक को रीड करना चाहिए या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत से बुक का रिव्यू। सो बेसिकली आज जिस बुक का रिव्यू मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ इट्स द 40 रूल्स ऑफ लव बाय अलिफ शफक। सो ये एक नहायत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बुक है और अगर आप सुकून, मोहब्बत, ज़िंदगी के गहरे मकसद और इस तरह की तमाम चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट गिफ्ट होगी। सो स्टार्ट करते हैं बुक की शॉर्ट समरी। सो ये कहानी दो मुख्तलिफ इराज़ को आपस में जोड़ती है, ठीक है। अब फर्स्ट कहानी की हम बात करते हैं एक मॉडर्न अहले खाना यानी कि एक मॉडर्न हाउस वाइफ जो अपनी बेरंग जिंदगी से परेशान है और एक किताब स्वीट फलस्पनी को पढ़ती है, ठीक है। अब दूसरी कहानी की जानेब बढ़ते हैं तो किताब के अंदर की कहानी जो कि 13th century की एक मशहूर सूफी जलाहुद्दीन रूमी और उनकी मजाहिन शब्स दोस्ती की है, ठीक है। सो बेसिकली कहानी है एक हाउसवाइफ की, ठीक है, जो कि एक बुक पढ़ रही हैं एंड देन बुक के अंदर भी एक कहानी चल रही है। सो ये दो तरह की चीज़ें हैं जो कि इस बुक को स्टार्ट कर रही हैं। सो अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक की क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी। सो द फर्स्ट इज़ शम्स तमजी की बताए हुए 40 रूल्स इंसानी दिल को बदलने की ताकत रखते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि द 40 रूल्स ऑफ लव क्या वाकई आपके दिल को बदल सकते हैं। तो हाँ, जब मैंने इस बुक को रीड किया था तो देन आई रियलाइज कि वाकई इन रूल्स के अंदर वो एबिलिटी मौजूद है कि जो किसी भी इंसान के दिल को वार्म कर सकते हैं। सो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ मुझे इस किताब की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी वो ये थी कि इसकी इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, ठीक है, अंदाज़ बहुत ही बाअसर है, दिलकश है, यानी कि आपको वोकैबुलरी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। जब आप इसको रीड करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बिल्कुल आराम से आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। And the third thing that I feel is कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, ऐसे लाइवली लाइट लाइट सा। सो आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल कुछ रीड कर रहे हैं। और द लास्ट थिंग जो कि मुझे इस किताब की सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो ये कि ये बुक हम सबको ये चीज़ रियलाइज़ करवाती है कि आप कभी भी नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दे सकते, या अगर आप किसी का भी दिल जीतना चाहते हैं तो आप मोहब्बत से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, नफ़रत को मोहब्बत में बदल सकते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। सो वैन अगर आपके साथ किसी का एटीट्यूड बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा हार्श है, सो जब आप उससे प्यार से पेश आएंगे या फिर मोहब्बत से उससे बात करेंगे तो अगले इंसान को ज़रूर रियलाइज़ होगा कि उसने कहाँ गलत किया, उसका बिहेवियर आपके साथ बुरा था या उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। सो ये कुछ खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें थी जो कि मुझे इस किताब की द 40 रूल्स ऑफ लव की अच्छी लगी। बाकी शॉर्ट समरी मैंने इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लिसनर्स को ज़्यादा स्पॉइलर मिले और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। सो बेसिकली बहुत सारे वो तमाम तर लोग जो समझते हैं द 40 रूल्स ऑफ लव जस्ट एक नॉवल है, सो उन सभी के लिए बता देती हूँ कि ये बिल्कुल भी एक नॉवल नहीं है बल्कि एक खूबसूरत स्पिरिचुअल प्लस ऐसी किताब है जो कि बहुत ही बाअसर है, इसकी वर्डिंग बहुत अच्छी है। सो अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो सबक आमोस हो, यानी कि जिससे आपको कोई लेसन मिले, साथ ही साथ ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी कम हो, तो आप इस बुक को ज़रूर रीड कर सकते हो।
अच्छा बात करते हैं कि मैं इस बुक को कितनी रेटिंग दूंगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने इसको रीड किया और जितना मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, सो आई वुड से अ सॉलिड 9 out of 10। अब आप सबने भी इस बुक को लास्ट में रीड करना है, जितनी भी मेरी डिवास हैं जो कि हैं बुक्स लवर। सो आपने रीड करने के बाद मुझे बताना है कि ये तो कुछ पॉइंट थे जो मुझे अच्छे लगे, जो मैंने आपसे शेयर किया। अब आपने मुझे बताना है कि आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे और आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है इस बुक के हवाले से। सो वेल, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा बुक रिव्यू? अगर आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह से आपके साथ मज़ीद बुक रिव्यूज शेयर करूं, तो डू लेट मी नो किस तरह से 0115710971 इस नंबर के थ्रू। जी तो लिसनर्स, वक्त हो गया है शो में एक अदद खूबसूरत ट्रैक को प्ले करने का, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और स्टार्ट करते हैं आज का द स्पाइस किचन।

So listeners, अभी वक्त हुआ है एक अदद का कमर्शियल ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222।

लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से खुशामदीद आप सभी को डीवर डायलॉग में, और मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा। सो वेल लिसनर्स, मैंने सोचा कि हमारे जितने भी लिसनर्स ने हमें प्यारी प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशंस भेजी हैं, तो क्यों ना उन सभी को शो में शामिल कर लिया जाए। सो वेल, कोशिश तो पूरी यही की गई है कि आपके तमाम तर पसंदीदा गाने शो में शामिल किया जाए। वेल, अगर फिर भी रह गई है किसी की कोई भी सॉन्ग रिकमेंडेशन, तो आप हमें बता सकते हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए सभी गाने शो में शामिल करें। साथ ही साथ एक बार फिर से आप सभी को बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं और बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। और अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM, इसे इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, सिंपली आपको जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपको सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल, ताकि आप और हम इसी तरह से साथ साथ रहें और जो हमारा ये कनेक्शन है वो इसी तरह से बरकरार रहे। सो वेल लिसनर्स, वक्त हो चुका है हमारे शो के अगले सेगमेंट का, यानी कि द स्पाइस किचन का। और इस तरह से है आज मंडे, द न्यू स्टार्ट ऑफ द वीक। सो मैं सोच रही हूँ आज से हम अपनी एक न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम इस पूरे वीक बनाएंगे टोटली पाकिस्तानी कुजीन। सो इस वीक में जितनी भी हम रेसिपीज बनाएंगे वो सब होंगी पाकिस्तानी कुजीन की। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस डिश की रेसिपी चाहिए, सो मैं उसे शो में लाजमी शामिल करूंगी। अगर कोई भी आप रेसिपी सीखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं या कुछ भी, एनीथिंग, सो जस्ट डू लेट मी नो। सो मैंने सोचा कि आज हम स्टार्ट करेंगे शाही कोरमा से। सो वेल लिसनर्स, आप सभी ने बहुत मर्तबा इस रेसिपी को ट्राई किया होगा और अपने अपने अंदाज में बनाया होगा, लेकिन आज जो मेथड मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा फ्यूजनल। सो इस बनाते हैं इस रेसिपी को और आपसे शेयर करती हूँ इसके इन्ग्रीडियंट्स। सो जितनी देर में आप सभी अपनी नोटबुक्स रेडी करते हैं या फिर आप अपने कामकाज को दो तीन मिनट के लिए साइड पे करते हैं, उतनी देर में हम ये ट्रैक सुन लेते हैं और ट्रैक से वापसी पर फिर मैं आपसे शेयर करूंगी फुल इंग्रेडिएंट, साथ ही साथ बताऊंगी कि आपने इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सो फिलहाल के लिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मैं सबसे पहले आपसे वो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स कर देती हूँ शेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं कीमती इस रेसिपी को बनाने के लिए। बेसिकली शाही कोरमा को बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 750 ग्राम्स, ठीक है, जिसे आपने अच्छी तरह से कट करके धो के रख लेना है। साथ ही साथ हमें चाहिए प्याज 2 मीडियम साइज़ के, योगर्ट 1.5 कप, घी या फिर कुकिंग ऑयल, ये अब आप पे डिपेंड करता है, जो आप यूज़ करते हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं। 4 to 5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर हस्पे ज़रूरत हस्पे जायका। अब आ जाते हैं शाही नट पेस्ट। इसके लिए हमें चाहिए काजू 10 से 12 अदद और बादाम भी 10 से 12 अदद। अब मसाला पाउडर्स की बात कर लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून। अब जरा बात कर लेते हैं साबुत मसालों की। तेज़पत्ता 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 इंच, उसके बाद जावित्री पाउडर 1.4 टीस्पून और केवड़ा वाटर 1 टीस्पून। जी तो लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनसे हम बनाएंगे मज़ेदार सा शाही कोरमा। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब। सबसे पहले एक कड़ाही में घी या फिर कुकिंग ऑयल, इसको कर लेंगे अच्छे से गर्म। फिर इसमें शामिल करेंगे कटे हुए प्याज और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ब्राउन गोल्डन हो जाएं। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसे आपने निकाल कर टॉवल पर फैला देना है ताकि वो बिल्कुल क्रिस्पी रहें। ठंडे होने पर इन्हें हाथों की मदद से क्रश कर ले और हल्का सा पीस ले। अब आ रही आती है नट पेस्ट बनाने की। काजू और बादाम को 15 मिनट गर्म पानी में अच्छे से भिगो के रखें। भिगो के रखने के बाद पानी या फिर हाथ की मदद से ब्लेंड कर लें और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर रेडी कर लें। अब हम क्या करेंगे कि उसी बचे हुए तेल या फिर कुकिंग ऑयल जिसे हमने गर्म किया था, किस लिए कि हमने उसमें प्याज ऐड किया था, उसमें शामिल करेंगे तेज़पत्ता, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी और इन्हें 30 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। आफ्टर 20 to 30 seconds हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और मज़ीद इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम उसे कढ़ाई में शामिल कर लेंगे चिकन। चिकन को मीडियम फ्लेम पर 5 से लेकर 6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और जैसे ही हमारे चिकन का रंग हल्का सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि पिंक से थोड़ा थोड़ा वाइट होने लगेगा, बस हमने उतनी देर तक इसे पकाना है। एट दिस मोमेंट फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे दही और 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। अब बारी आती है, तकरीबन हमारा मसाला भी हो चुका है रेडी और चिकन भी ऑलमोस्ट अपना रंग तब्दील कर चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप पानी, ठीक है, ढक्कन को ऊपर से कर देंगे बंद और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और 15 से लेकर 16 मिनट्स तक इसे अच्छी तरह पकाएंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। अब इसी में क्रश की हुई फ्राई प्याज, काजू बादाम का पेस्ट, गरम मसाला और जावित्री पाउडर ये सब ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ढक्कन बंद करके रखेंगे क्योंकि बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसे 5 से लेकर 7 मिनट तक दम पर छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा दानेदार हो जाएगी और ऑनेस्टली टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेंडर टेस्ट करेगी। अब बस गैस बंद करें और ऊपर से केवड़ा वाटर छिड़क दें। 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद रहने के बाद आप फील करेंगे कि खुशबू इस कदर बहुत ज़्यादा होगी कि पूरे घर में फैल जाएगी। आपका शाही कोरमा हो जाएगा तैयार।

लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मजेदार सी चटहारेदार सी शाही कोरमा की रेसिपी। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। वेल, मेरे पास तो चिकन मौजूद था तो मैंने चिकन में ही बनाया, और पर्सनली मैं चिकन प्रेफर करती हूँ। सो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मोस्टली रेसिपीज चिकन की हों। वेल लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि गर्मा गर्म हो चुकी है तैयार, और मेरा दिल कर रहा है कि किसी तरह से हम शो को कर दें यहीं पे स्टॉप और मज़ेदार सी इस रेसिपी को खाना शुरू कर दें, लेकिन अभी तो नहीं खा सकते। वेल लिसनर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार से चटखारेदार सा टेस्ट आप भी ट्राई करें, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर इस रेसिपी के हवाले से या फिर इंग्रेडिएंट्स के हवाले से हो आपका कोई भी सवाल, तो 01157100971 इस नंबर पर जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी उस क्यूरी को दूर किया जाए, और मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की, आपको कैसी लगी, या फिर आपने इसको किस तरह से नोश बनाया। वैसे आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, लंच में या फिर डिनर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा यमीएस्ट है, प्लस एक फुल एनर्जी मील है जो कि आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करेगा और टेस्टी भी होगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप हमें इसी तरह से बताते रहेंगे और आपकी रिकमेंडेशंस को हम शो में शामिल करते रहेंगे। सो वेल लिसनर्स, डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है अभी शो के अख्ताम का। सो जो सफ़र हमने अब से ठीक 2 घंटा पहले स्टार्ट किया था, अब वो होने जा रहा है ख़त्म, और दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब गुफ्तगू इतनी खूबसूरत हो, बाअसर हो, तो दिल करता है कि इंसान बस बोलता चला जाए, बोलता चला जाए, और ये सफ़र कभी ना रुके। लेकिन जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है, क्योंकि मेरे बाद भी हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग शोज आप सभी के लिए। सो वेल लिसनर्स, बताइएगा कि आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, और इस हवाले से अगर आपके कोई भी कोई कन्फ्यूजन हो या किसी भी चीज़ को आप डिस्कस करना चाहते हो, तो बिना झिझक आप 01157100971 इस नंबर पर कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। इसी के साथ ही जाते जाते एक बार फिर से आज के खूबसूरत से मोटिवेशनल से कोट्स रिपीट कर देती हूँ। सो आज का हमारा फर्स्ट कोट ये कहता है कि अपने आप में वो हिम्मत सकत ताकत पैदा करके रखो कि आप किसी भी तूफान के सामने खड़े हो जाओ और आपको कोई भी फर्क ना पड़े। और सेकंड कोट ये कहता है कि परफेक्शन कुछ नहीं होता, एवरी बॉडी हैज़ इम्परफेक्शंस इन देयर लाइफ। सो इस चीज़ की वजह से, इस बात की वजह से कभी भी खुद को डीमोटिवेट ना करो। सो ज़्यादा ज़्यादा एक बार फिर से बताते चलती हूँ कि आपका मेरा रबते का नंबर है 01157100971, और आप किस तरह से हमें ट्यून कर सकते हैं, www.radiofaza.com.uk इस वेबसाइट के थ्रू, और हमारी एप्लीकेशन जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM इसके थ्रू, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप फजा टैप के थ्रू भी हमें ट्यून कर सकते हैं। सो ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप हमसे, हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो इसी तरह से आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और आज का दिन बनाना है खूबसूरत, मीनिंगफुल, और आज के टास्क लाजमी कम्प्लीट करने हैं। और इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ। सो ज़्यादा ज़्यादा ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूँ, जो कि है आतिफ असलम की आवाज़ में, जो कि मेरे आपके हम सभी के हैं फेवरेट सिंगर। सो ज़्यादा ज़्यादा ये खूबसूरत सा ट्रैक इन्जॉय के लिए, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।

और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा और पैसेंजर को जान की मंजिल तक खैर खैरियत से पहुंचाइएगा। बस हमेशा की तरह प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है, उस टॉपिक के बाद से डिस्कस स्टार्ट किया जाती है, लेकिन मंडे के दिन को हम थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं क्योंकि ये वीक का पहला दिन होता है। सो इस दिन को खूबसूरत बनाएंगे तभी आपका पूरा वीक जो है वो अच्छे से गुजरेगा। और साथ दे सकते हैं, साथ होने का एहसास भी दिला सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकेकार आपको बता देते हैं। 01157100971 इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से, और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मेजर आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुँचाएंगे। तो मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत से लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझ तक पहुंचानी होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि मतलब वीकेंड पे मैं जब जाती हूँ तो फिर उस दिनों में जो जो मेरी एक्टिविटी होती है ना, जो जो मैं करती हूँ, जो जो मैं सुनती हूँ, जो मैं समझती हूँ, वो मैं आपके साथ आके ज़रूर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बकवास आपके अलावा और किसी ने नहीं सुननी। अरे जहाँ पर आप जैसे खूबसूरत लोग सुनने वाले होंगे वहाँ पर हम बोल बोल कर नहीं थकेंगे, बल्कि बातों को वो कहते हैं ना गल्ला चो गल्ला कढ़नियाँ, वो सानू फिर बड़ी चंगी तरह दिया ने। सो हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ खूबसूरत से ट्रैक के साथ। अभी मैं लेकर आई हूँ अली जफ़र की आवाज़ और अताउल्लाह खान की आवाज़ को, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ प्रोग्राम का। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और ठीक 2 बजे तक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फॉर 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स टाउन, जब आज आप सुन रहे हैं सलू राज की। सो उसी के साथ साथ अभी जो है वो एक छोटा सा ट्रैक प्रोग्राम में लगाया था और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। सो साथ ही साथ मेरे पास ढेरों फरमाइशें आना शुरू होगी। मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझे एक फरमाइश आई है और मैं आपको इतना ही कह देती हूँ कि अब मेरे पर्सनल नंबर पर फरमाइश करने से बेहतर है कि आप हमारे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें और हमें खुशी भी होगी। जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया। आप तमाम नई समातों का ये नंबर नोट करवा देते हैं आपको, 01157170971। वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोग्राम में प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी जो है वो वही बात आ गई कि जब मुझे आपसे गपशप करने का मजा आने लग जाता है, या तो प्रोग्राम में शुभ का टाइम आ जाता है या तो फिर वक्त ख़त्म आ जाता है। सो बल पता ही नहीं चलता, टाइम भी इतनी जल्दी गुजर जाता है। बल अभी जो है ना वो प्रोग्राम एक छोटी सी शुभ ख्याल होगी, इसके उस पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे मज़े मज़े के टॉपिक्स के साथ, मज़े मज़े की बातों के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। क्या लगती नहीं, मिलते हैं इस ट्रैक और एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस बार।

0: पागल
1: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए.

0: कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
2: You are playing Fazan 97.1 FM.

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू, देखिए हर जुमा।
3: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवल प्रोग्राम एक छोटी कमर्शियल ब्रेक खा लो चुकी, कमर्शियल ब्रेक उस पर ही आपसे मुलाकात। बीच में ना जाने गाने का क्या क्या बता देते हैं कि आप देखना चाहते हैं तो ये, वो दरअसल हम भी अपने प्रोग्राम में बताते हैं ना कि अगर आप ये वाला प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे हमें ट्यून करें, ये करें तो वो करें, तो वो भी जो है ना वही कर रहे हैं। खैर अभी जो है ना मेरे पास एक ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, अगर बोलते हैं तो मैं उसको जो है प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ अगर आप बोलेंगे तो, वरना जो है हम उसको बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उसको सुनेंगे ना तब आपको खुद ही वो अच्छा लगने लगे, क्योंकि मेरे पास इस ट्रैक की फरमाइश पहले भी आती रहती है। सो वेल उस्ताद नुसरत नहीं बल्कि फतेह अली खान, इनका पूरा नाम क्या था, राहत फतेह अली खान नाम था इनका, एक तो मुझे इनके नाम भूल जाते हैं। सो वेल आइए इस ट्रैक को सुनते हैं, इसके बारे में आपसे मुलाकात, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

सो कभी कभी हम किसी के लिए इतने भी ज़रूरी नहीं होते जितना खुद को ज़रूरी सोच लेते हैं। हाँ ये भी सही है, अहम होने का जो वहम है ना वो इंसान को बहुत बहुत देर तक रहता है, और जब उसको उसके बारे में इल्म हो जाता है तो फिर उस चीज़ से निकल भी आता है। सो अहम होने का वहम करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने लिए अहम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को फर्स्ट पे रखें, ना कि दूसरों को अपनी ज़िंदगी में पहले नंबर पे लेकर आएँ, या फिर अपनी ज़िंदगी की डोर को किसी और के हाथ में ना दे दें, ताकि ये ना हो कि वो आपकी ज़िंदगी की डोर को अपनी मर्जी से खींचना शुरू कर दें। हाँ उस इंसान के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर दे सकते हैं जिसको देख के ये कहा जा सके कि ये इंसान आपको कभी बुरा नहीं चाहेगा। सो इसी तरह प्रोग्राम में शामिल होकर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी मेरे पास एक छोटा सा मैसेज शामिल करवाया गया था मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज करके, और आई डोंट नो कि इन्होंने किनको डेडिकेट किया है, मुझे नहीं आइडिया, बट मैसेज कुछ इस तरह से है कि अच्छा कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ उठते बैठते हैं ना तो आपको किसी भी तरह की कोई बात मार दे, कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दे, तो हमें ऐसा लगता है कोई नसीहत दे दे तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद हमारे लिए ही बनाई गई है, वो हमारे लिए है। सो इसी तरह भी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ये जिन्होंने बात बोल दी है प्रोग्राम में शामिल करवाने के लिए, कि शायद उन्होंने मुझे लेके बोली है। मतलब इंसान का दिमाग ऐसा ना कि वो कुछ भी सोचता रहता है। सो बट बात ये है कि प्रोग्राम में छोटा सा कि रिश्ते मोतियों जैसे कीमती होते हैं, खो जाएं तो ढूंढ लेने चाहिए, गिर जाएं तो उठा लेने चाहिए, लेकिन हमेशा गिरी हुई चीज़ को उठाना जो है ना वो गलत बात होती है। उस चीज़ को उठाएं, उस रिश्ते को वहाँ से उठा लाएं जो आपके साथ सच्चे दिल से चलना चाहते हैं, मुखलिस होकर चलना चाहते हैं। किसी के कहने पे आकर किसी के साथ किसी भी तरह का रिलेशन ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि दैट्स मेन थिंग कि आप उनके साथ अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं और अगला इंसान अपना रिलेशन उनके साथ सही कर ले। वो कहते हैं ना कि रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना है। वो बड़ी प्यारी बात बोली थी किसी ने कि जब गैर प्यार करते हैं और अपने प्यार नहीं करते तो बड़ी तबाहियां होती हैं। सो बड़ी सादी सी बात है कि रिश्ते जो है ना वो एहसास के होते हैं, हिसाब के नहीं। तो कोशिश ही करें कि किसी के साथ बिना मतलब के रिश्ता रखें। जो लोग नफ़ा नुकसान सोचे वो सौदा होता है, वो रिश्ता नहीं होता। सो कोशिश ये करें कि उनके साथ उठे बैठे उनके साथ रहें जो आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं।

वेल, अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश मौजूद है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उसके उस पर आपसे मुलाकात करते हैं आकर, क्योंकि गपशप का सिलसिला तो आपके साथ जारी ही रहेगा हमारा। वेल, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: उससे शादी का सुनकर तो घर छोड़ कर चला गया यार।
1: जी हाँ दोनों से वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स, लंच बॉक्स आप सुन रहे हैं राज की सूरज के साथ साथ। प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। वही इसी के साथ साथ जो है वो टाइम काफ़ी कम नहीं है, मतलब टाइम कम ही है। किस तरह से कम है, क्योंकि प्रोग्राम में अभी कमर्शियल ब्रेक का भी वक्त होने लगा है।

अभी जो है ना, मेरे पास एक और छोटा सा ट्रैक की फरमाइश मौजूद है। अगर कहते हैं तो हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, अगर आप कहें तो। बल्कि आप तो कहेंगी, क्योंकि आप लोगों को तो वैसे भी ट्रैक तो बहुत पसंद होते हैं। सर अभी जो है ना, वो प्रोग्राम में ट्रैक शामिल करेंगे, लेकिन अगर कोई ट्रैक किसी प्यार को डेडिकेट करना चाहे, कोई अपनी फरमाइश पर प्ले करवाना चाहे, तो वो भी करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि इस ट्रैक को सुनने से पहले कोई कॉफ़ी शॉफ़ी जो है ना वो मंगवा लें, क्योंकि इसको सुनते हुए कॉफ़ी का मज़ा जो है ना वो एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि मैं इस ट्रैक को पहले भी सुन चुकी हूँ और मैं जिस तरह से सुनती हूँ ना वो आपको बता रही हूँ। कॉफ़ी या चाय जो है वो मंगवा लें, या फिर आप ऐसा करेंगे खाना ही मंगवा लें, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। आप वहाँ पर खाना मंगवाएं, हम अपने स्टूडियो में मंगवा लेते हैं, फिर मिलकर जो है ना वो लंच ब्रेक को इंजॉय करते हैं। हर तंज मजाक का सिलसिला जारी रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मजीद मैसेजेस जो है हम तक पहुँचेंगे तो हम आप तक जरूर पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस फरमाइश को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जैसे ही आपकी फरमाइश हम तक पहुँचेगी, जैसे ही आपका मैसेज हमारे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, हम उस मैसेज को चुपके से जो है ना प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। सो अभी जो है इस ट्रैक को सुनते हैं। इस ट्रैक के उस पर मैं भी शायद मेरे आपके दरमियान एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाए, तो उस ब्रेक को भी सुनिएगा, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को एंड डैप को। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर।

अभी के लिए इतना कह देती हूँ कि प्रोग्राम शाम में आपको ऐसे जाकर शाम में कभी जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों, कोई ट्रैक अपने आप को डेडिकेट करना चाहें या वीकेंड पे कोई ऐसे ट्रैक बार बार सुने हो जो बार बार लगा के सुनाओ, तो मुझे उस ट्रैक का लाजमी बताइएगा, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने वीकेंड पे एक ट्रैक सुना था, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर करूंगी, अभी नहीं बल्कि ब्रेक के, उस वक्त के ब्रेक के बीच में अगर मैंने उस फरमाइश को पूरा कर दिया तो वो फिर आप सुन ही नहीं पाएंगे, फिर मज़ा भी नहीं आएगा। हाँ, अपनी फरमाइश पर भी ट्रैक पे करूंगी, लेकिन अभी तक स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड डैप। चलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जानिब, मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फॉर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवाल अभी उसी के साथ साथ मेरे पास चंद ट्रैक्स जो हैं उनकी फरमाइश है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। मेरे ख्याल में छोटा सा कोई मैशअप है, वो आइए सुनते हैं इस मैशअप को। इसके उस बारे की आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 107.1 FM के लाइव स्टूडियो से। सोलो सी के साथ साथ अभी मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फिर इस बार आपको एक अपनी मर्जी का एक ट्रैक सुनाऊंगी, जिसके भी मैं डिस्कस करी थी ना कि मैंने वो ट्रैक काफ़ी ज़्यादा सुना है वीकेंड पे। सर वो आपको इसके बाद सुनाएंगे। बिना के इस ट्रैक को सुनिएगा, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ अभी ट्रैक शामिल किया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। फरमाइश पे था जी ये ट्रैक, तो मैंने सोचा कि इसको प्ले कर दिया जाए। अभी जो है वो प्रोग्राम में मैं अपनी मर्जी का ट्रैक प्ले करना चाहूँगी और आपको पसंद भी आएगा वो ट्रैक। वो क्या कहते हैं, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं आज की सुबह बीसी के साथ। कमर्शियल ब्रेक आ रही थी, कमर्शियल ब्रेक के बाद ही आपसे मुलाकात। और हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट, तो अभी जो पहला ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, तो अगर कहते हैं तो कर देते हैं। कहते क्या है यार, फरमाइश आई है तो उसको तो शामिल करना बनता ही है ना भाई। अच्छा, मुझे ना ट्रैक ढूंढने में बड़ा मसला होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मसला होता है, बट मुझे ट्रैक मिलते नहीं हैं। और एक बड़ा एक और मसला ये भी है मेरा कि जब मैं वीकेंड पे जाती हूँ तो कभी भी मतलब कहीं भी 2 घंटे का टाइम आपके साथ मेरा होता है, उसके बाद मैं जो भी एक्टिविटी करती हूँ, फिर मैं कोई ट्रैक सुनूँ तो मैं कहती हूँ कि उसको आपके साथ शेयर करूँगी, बट वो अगले दिन आकर मुझे वो ट्रैक भूल जाता है। ये मेरी भूलने की जो बीमारी है ना, ये मुझे बड़ी दूर तक लेके जाएगी।

अच्छा, मैंने ना वीकेंड पे एक मूवी देखी थी, तो उस मूवी का ये ट्रैक है। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक को पर रहिए आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। सुलसी के साथ साथ प्रोग्राम में चंद ट्रैक्स शामिल किए जा रहे थे और अभी जो है वो वक्त तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि एक तो पता भी नहीं चलता टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। सो हम इतना कह देते हैं कि आप नहीं, अगर कोई ट्रैक प्ले करवाना है तो मुझे अभी से ही बता दें, ये ना हो फिर बाद में मैं उस ट्रैक को प्ले ना कर सकूं और वो कहते हैं ना निराश, फिर आप मुझसे कहीं निराश ना हो जाएं। फिर आपने मुझे दगाबाजी कहना मुझे पक्का यकीन है, इसलिए मैंने इस ट्रैक को भी शामिल कर दिया प्रोग्राम में। यही कहूँगी कि कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई फरमाइश पूरी नहीं हो पाई तो उसके लिए माजरत। बाकी ट्रांसमिशन हमारी आपके साथ जारी रहेगी, जुड़े रहेगी। आप उनके साथ फरमाइश के, वो कहते हैं ना, उनके उनसे फरमाइश कीजिएगा, आपकी फरमाइश को ज़रूर वो पूरा करेंगे। बस स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। कल तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सत बिस्मिल्लाह जी, आया अनुप खैर आगले। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे, निभा रहे होंगे। ज़िंदगी को कैसे जीना है जानते तो सभी हैं, लेकिन कोशिश कोई कोई करता है, कोशिश वही करता है जिसको अपने आप पर यकीन होता है और उस कायनात को बनाने वाले पर यकीन होता है, जिसने कायनात को बनाया। मेरा नाम राना अरसलान अली है और आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM। वेल जी, टाइम हो जाता है 2:05 का और आपका और मेरा साथ रहने वाला है ठीक ठीक ठीक 4 तक। और इस साथ के दौरान होंगे बहुत सारे तड़के म्यूज़िक के और उसके साथ साथ होगी गॉसिप आपकी और मेरी, कुछ गपशप होगी, कुछ हम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी लेकर आए हैं आपके लिए और उसके साथ साथ कुछ अच्छी और मोटिवेशनल बातें भी होंगी। यानी कि ओवरऑल आपके और मेरे दरमियान जो आज कुछ होने वाला है सब कुछ वो हेल्थी और पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मुझसे और बहुत कुछ मैं आपसे सीखूंगा, तो मेरा साथ आपने ज़रूर देना है। साथ देने के लिए आपने कुछ इस तरह से करना है कि मोबाइल आपने उठा लेना है और डायल करना है 01157100971, हमारा रابطے का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लगती है, हमारा रेडियो फ़ज़ा कैसा लगता है और हमारी जो स्ट्रीमिंग है वो कैसी लगती है। और उसके अलावा आप अपनी फरमाइश जो है, क्योंकि हम आपके हुक्म के ताबेदार हैं, इसलिए आप हमें हुक्म भी दे सकते हैं कि ये गाना प्ले कर दिया जाए। और बिल्कुल जी, आपका जो गाना होगा वो हम प्ले करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, यानी कि अगर शो के दौरान आपने एज सून एज पॉसिबल हमें फरमाइश कर दी तो फिर डेफिनेटली हम उस गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे। अगर आपने डिले किया तो फिर डिले होता जाएगा, तो आपने डिले नहीं करना, बिल्कुल भी डिले नहीं करना और आपने कोशिश करनी है कि एज सून एज पॉसिबल आप अपनी फरमाइश को हमारे आगे रख दें ताकि हम एडजस्टमेंट करें उसकी, जैसे भी हो मैं करूँगा भाई पूरी फरमाइश आपकी, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं।

इसके अलावा जी आप मुझे बता सकते हैं आप किस तरह से हमें सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि जी ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ तरीकों से लोग सुन रहे होते हैं। कुछ बंदे लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ बंदे मोबाइल फ़ोन के थ्रू हमें सुन रहे हैं, कुछ लोग जो है वो ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कौन कहाँ से कैसे सुन रहा है और उस हिसाब से हम आपसे गॉसिप करें, उस हिसाब से हम आज की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करें। बहरहाल जी प्रोग्राम के स्टार्ट में हम एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वो मैं अपने नाम ही करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक किसी और के नाम तो मैं कर नहीं सकता, तो ये खूबसूरत सा सॉन्ग है ये मैं अपने नाम ही करने जा रहा हूँ। पहला सॉन्ग है गाने के अंदर, गाना जो है हम शामिल करने जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। भाई क्या हो रहा है, क्यों आज ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही, चलें इस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये गाना जो है फ़िलहाल आप सुनिए और इस गाने के उस पार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये गाना जो है खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आवाज़ है, तो वो भी आपने सुननी है ना।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और मुझे कहते हैं राणा अर्सलानली, आप सुन रहे हैं रेडी फॉर द 97.1 FM। अभी आप सुन रहे थे किन्ना सोना, ये सॉन्ग मैंने खुद को डेडिकेट किया था। लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग जो भी होगा वो हम आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। आप लोग अपनी फरमाइश जो है वो हमारे सामने रख सकते हैं, और रखने के लिए आपने करना कुछ यूँ है, आपने लाइव कॉल भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा रबते का नंबर है 01157100971। इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके अलावा आप अपनी पसंद का म्यूज़िक भी चूज़ कर सकते हैं। टॉपिक अभी तक हमने बताया नहीं, इसलिए आप टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते। टॉपिक की बात हम करेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। अभी आपका और मेरा साथ काफ़ी लंबे टाइम के लिए है। बरहाल जी, मेरी मॉर्निंग तो अभी हुई है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये आफ्टरनून है, लेकिन जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है राइट नाउ, लोगों का जो शेड्यूल है, लोगों का जो स्केड्यूल बने होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। आपके पैटर्न इस तरह के होते हैं कि आप लोग कभी रात को सो रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं। तो ये आप लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से चल रहे होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी मेरी मॉर्निंग हुई थी, लेकिन जो मैंने म्यूज़िक लगाया वो बड़ा खूबसूरत था। और किन्ना सोना, इसके आगे हम चल के हल्ले गुल्ले वाला म्यूज़िक लगाएंगे, ताकि मुझे थोड़ी होश आए, मैं थोड़े अपने हवास में आऊँ, और हम लोग जो है वो अच्छे से एनर्जेटिक से बात कर सकें और एनर्जेटिक सा प्रोग्राम भी कर सकें। आप मुझे अपनी रूटीन भी बता सकते हैं, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब गाते हैं, कब गुनगुनाते हैं, और कब प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और कब सारा कुछ आप बता सकते हैं मुझे। और बताने के लिए डेफिनेटली आपको मैंने अपना नंबर बताया हुआ है, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी रूटीन भी बता सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है मैंने जैसे बात की कि बहुत सारे लोग हैं जो रात को काम करते हैं, बहुत सारे जो हैं उनकी डे शिफ्ट होती है, तो इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसकी रूटीन कैसी है, कौन रात को जागता है, कौन दिन को जागता है। ओवरऑल मतलब हम एक रूटीन ले लेते हैं कि डेफिनेटली हम जब दिन को देखते हैं तो रोशनी होती है, बाहर लोग होते हैं, चहचहाट होती है, तो उनको देख के हम ये कह देते हैं कि जी आज जो है वो बाहर रौनक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर रात को रौनक होती है, जैसे कि दुबई। दुबई के अंदर दुबई जो है वो दिन को सोता है और रात को जागता है। ये आपको पता था या नहीं, मुझे बताइएगा जरूर। बहरहाल जी, अब हम बल्ले बल्ले करने जा रहे हैं, किसकी ये तो आप बताएंगे कि किसकी बल्ले बल्ले हो रही है, आपकी होगी या मेरी होगी। और ये खूबसूरत सा सॉन्ग है दलेर पाजी का, दलेर मेहंदी साहब का, और क्या खूबसूरत म्यूज़िक है यार। थोड़ा ओल्ड है, लेकिन यकीन कीजिए कि जब भी सुनता हूँ ना एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तो आइए मिलके एनर्जी लेते हैं इस गाने से, आप भी और हम भी।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो फदा 97.1 FM। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली, और अभी आप सुन रहे थे दलेर पाजी का हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये बल्ले बल्ले आपकी ही है और आपकी ही हुई है। बहरहाल जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मैं आज का टॉपिक बताता चलूं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हैव यू एवर सीन अ रेड फ्लैग एंड स्टिल डिसाइडेड टू इग्नोर इट। क्या कभी आपने सुर्ख झंडा देखा और उसको फिर भी चाहकर इग्नोर कर दिया हो? आपको समझ आई या नहीं आई? अगर नहीं समझ आई तब भी आप मुझे बता सकते हैं, अगर समझ आ चुकी है तब भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसको मैं डीपली भी समझाऊंगा आपको आगे चल के कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे जो समझदार हैं उनके लिए कहते हैं इशारा ही काफी है।

अच्छा जी, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनको रेड फ्लैग समझ ही नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे हैं जो देखते ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे रेड सिग्नल है, कुछ नेगेटिव वाइब है। कुछ लोग समझ आते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब है, ग्रीन सिग्नल है। ये ग्रीन और रेड सिग्नल जो है ना, इसी के बीच में मेरे ख्याल के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है, सर्कुलेट कर रही होती है। जैसे हम रोड के ऊपर होते हैं और हमें नज़र आ जाता है रेड फ्लैग, यानी कि रेड सिग्नल नज़र आता है, तो हमें रुक जाना चाहिए। अगर आप ड्राइव करें तो आपने एहतियात से ड्राइविंग करनी है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो भी ज़िंदगी की गाड़ी को लेके चलने के हवाले से है। वैसे गाड़ी कोई भी हो, ज़िंदगी की हो या रोड के ऊपर जो हम एक्चुअली गाड़ी चला रहे होते हैं वो गाड़ी हो, दोनों को एहतियात से ही चलाना चाहिए। दोनों में जो ड्राइवर होता है उसकी नज़र जो है वो रोड के ऊपर होनी चाहिए, दुनियादारी की, जो दुनियादारी के अंदर आपको आपकी नज़र जो है वो दुनिया के ऊपर होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बड़ी कॉमन है, बड़ी मिलती जुलती हैं। इसी से रिलेटेड मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि मेरे वाले साहब अक्सर मुझे कहते हैं कि जो बंदा ड्राइवर हो, कहते हैं जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, उससे ज़्यादा बेहतर दुनियादारी को कोई बंदा समझ नहीं सकता। आपकी क्या राय है इसके बारे में? हो सकता है आपकी राय डिफरेंट हो, इससे अलग राय हो, लेकिन आपकी जो राय है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप अपनी राय भी बता सकते हैं। बहरहाल ये मैंने ना सिर्फ अपने वाले साहब से बल्कि बहुत सारे और भी लोगों से, जो मैच्योर लोग हैं जिन्होंने दुनियादारी को समझा हुआ है, जो अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, दुनियादारी को, मामलात को, वो भी बताते हैं कि भाई जो इंसान है जिसने रोड के ऊपर धक्के खाए हों, जिसने सफ़र किया हो, जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, वो बंदा जो है वो दुनियादारी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। और रेड फ्लैग के हवाले से हमारी बात है। बहरहाल बात चलती चलती कहाँ से कहाँ चली गई। ना ना राणा जी, ज़्यादा दूर ना जाओ, वापिस आओ, हम अपने टॉपिक पे रहें ताकि हम चलते चलते कहीं दूर ना निकल जाएं।

परल जी, आज चूंकि हमने टॉपिक के अंदर वो रेड और ग्रीन सिग्नल के इशारे दे दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे इमरान खान का एम्पलीफायर भी याद आ गया, तो उसको भी हम साथ लेकर चलते हैं और वो गाना भी सुनते हैं, और जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हमारी डेफिनेटली डिबेट चलेगी, हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे और आप लोग अपनी राय का इजहार भी करेंगे, सारी चीज़ों को मिल मिला के हम लेकर चलेंगे। तो ये गाना भी सुनते हैं ताकि हमारी इंजॉयमेंट जो है वो भी चलती रहे, बोरियत ना हो। तो बोरियत को दूर करने के लिए इमरान खान आ चुके हैं हमारा साथ देने के लिए एम्पलीफायर को लेके।

तो आप लोग इमरान खान के साथ दूर ना निकल जाइएगा, क्योंकि इमरान खान के पीछे पुलिस लगी हुई है और एम्पलीफायर उनके पास है, लाउड म्यूजिक है। आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है? मिलते हैं इस गाने के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रनार अरसलान अली। थैंक यू वेरी मच लौट के आने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीट से उठ के आ जाइए, बैक सीट से, क्योंकि एसी ऑन नहीं करना। आज टेम्परेचर जो है नोटिंगम का वो बहुत नाइस है। मैं आते हुए देख रहा था कि आज का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाइस वेदर है और बहुत अच्छा मौसम है, एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें। ताकि आप लौट आएंगे फिर हम डिस्कस करें आज का हमारा जो टॉपिक है वो, जो रेड फ्लैग के हवाले से हम बात कर रहे थे। रेड फ्लैग किस चीज़ का भाई, कौन सा लाल झंडा, किस लाल रंग की हम बात कर रहे हैं। वैसे मैं अपनी बात करूं, ओवरऑल मुझे जो है वो बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी बात को लेके या किसी भी डिसीजन को लेके, कि भाई यहाँ पर जो है वो मुझे कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, कौन सा जो है वो झंडा दिखाई दे रहा है। लाल झंडा है, ग्रीन झंडा है, या लाल सिग्नल है, रेड सिग्नल है, या ग्रीन सिग्नल है। तो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो इंसान को

जो वाइब्स आ जाती हैं पता चल जाता है। वो सिग्नल्स इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत मुफीद होते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही ज़हीन लोगों को ये चीज़ें जो हैं, ये सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं या उनको समझ आ जाता है इसके बारे में। अगर आपको समझ आ जाती है इस चीज़ को लेके कि आप किसी रिलेशनशिप के बारे में या किसी दोस्ती के बारे में या किसी रिश्ते के हवाले से या फिर किसी भी डिसीजन को लेने के हवाले से आपको कोई सिम्टम्स जो नज़र आते हैं, अगर आपको नज़र आ रहे होते हैं या वो वाइब्स आ रही होती हैं, तो डेफ़िनेटली आप भी मेरे ही सर्कल में शामिल हो रहे हैं, आप भी ज़हीन हैं डेफ़िनेटली। ये जो मुस्कुराहट है आपकी ये कायम रहे, क्योंकि आप लोग जो हैं उस सर्कल के अंदर हैं जहाँ पर मैं हूँ। हम लोग ज़हीन हैं, ज़हीन तरीन हैं, बहुत ज्यादा ज़हीन है। अपने मुंह आप ही मियां मिठू बनी जा रहे हैं भाई, क्या कह सकते हैं। बहरहाल जी, ये हकीकत है कि मैं जब भी किसी चीज़ को लेके कोई फैसला करने जा रहा होता हूँ तो मुझे अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए सोचने का, समझने का, तो यकीन कीजिए कि मेरा वो डिसीजन जो होता है वो मेरे फ्यूचर के हवाले से या वो उस सिचुएशन के हवाले से बहुत ही शानदार होता है, बहुत खूबसूरत होता है। और उस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मुझे जो वो वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पर ये रेड सिग्नल है, यहाँ से हमें यू टर्न ले लेना चाहिए या यहाँ से हमें मूव आउट कर जाना चाहिए, यहाँ से हमें जो है वो बैक स्टेप ले लेना चाहिए, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो इंसान को गाइडलाइन एक जो मिल जाती है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इंसान खुद से ही मशवरा कर सकता है अपने आप से, अपनी ज़ात से, अपने दिमाग के साथ।

इन सिग्नल्स को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, बहुत सारे जो हैं वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है जो आपका मैसेज सीन करे और सीन करने के बाद कई घंटों तक वो रिप्लाई ना करे, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी इंसान को वाइब्स आ जाती हैं भाई, जैसे कि आपने अपना उधार वापस मांगना हो गया भाई, अगले बंदे से पैसे वापस मांगने, और वो आपका मैसेज देख ले और रिप्लाई ना करे, कितने घंटे तक रिप्लाई ना करे, तो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए यहाँ पे रेड सिग्नल है भाई। अब आप समझ चुके होंगे मेरी इस एग्जाम्पल से कि रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल का जो डिफरेंस है वो किस तरह का है।

बहरहाल जी उधार से मुझे याद आ गया ये गाना लुट ले गया धुरंधर मूवी का। आइए ये सुनते हैं और अपने आप को लुटा हुआ महसूस करते हैं, हमारे साथ शामिल हो जाइए इस गाने के अंदर। मैं इसे पूछ के आता हूँ कौन सा लुट के लेके गया भाई, वो क्या चीज लुट के लेके गया, कितने पैसे गए तुम्हारे बंदे। बहरहाल जिस गाने के उस पर दोबारा से मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रेडियो फजा 97.1 एफएम से आप लाइव मुझे सुन रहे हैं। अपने बारे में मैं आकर बताऊंगा, गाने का मजा ना किरकिरा हो। तो मिलते हैं गाने के उस पार।

वेल जी, अभी आप सुन रहे थे, मैनू लुट लिया गया और उसके बाद अब हम दोबारा लोड कर आ चुके हैं। और आपकी और मेरी ये गॉसिप जो है वो चलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन होती रहेगी। फेक लाइफस्टाइल, फेक जो है हमारी फ्रेंडशिप, इसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। हमारी आज की जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो रेड फ्लैग के हवाले से है कि क्या आपको उसके सिम्टम्स आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते। और अगर आते हैं तो तभी आप हमें बता सकते हैं कि कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, ताकि जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं आते उनकी हेल्प आउट हो सके। क्योंकि जी ये ऐसी यूनिक चीज़ है जो कि हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती, और जिनके अंदर नहीं पाई जाती वो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली तरसते होंगे। अगर नहीं तरसते तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने चूज़ कर लिया है, जब जब वो सुनेंगे तो डेफिनेटली वो तरसेंगे कि काश हमारे अंदर भी राणा अरसलान वाले वो सिम्टम्स होते, वो चीज़ें होती जो कि हमें इशारा दे देती, हमें बता देती कि यार यहाँ पर जो है वो रेड सिग्नल है, रेड वाइब्स हैं। वैसे रोड की बात करें तो आजकल तो रोड के हवाले से हमें पता चल जाता है कहाँ पर यू टर्न है। मैप के ऊपर यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी ऐप्स हैं। मैं जब दुबई मैंने लास्ट विजिट किया तो दुबई के अंदर मुझे मेरा दोस्त है, उसने मुझे ड्राइविंग करते हुए बताया, कहता है यार ये एक ऐप है, इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, कहाँ पर आपने स्पीड को किस लिमिट में चलाना है, कहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वाले खड़े होंगे। इस लेवल तक जो है वो इंसान को आइडिया हो जाता है रोड के हवाले से। लेकिन एक्चुअल जो लाइफ है उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस डेली नया नया एक्सपीरियंस होता है, नए नए लोग होते हैं, नई नई मुलाकातें होती हैं, नए नए रिलेशन बनते हैं, तो नई नई चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। तो उन सारी चीज़ों के अंदर फिर ये चीज़ जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत अहमियत की हामिल होती है कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि भाई हम लोग जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो क्या बंदा ठीक है, या उसके अंदर रेड सिग्नल है, उसके अंदर एक लाल झंडा है। ये जो लाल रंग है भाई, आज मुझे मेरे ख्याल से काली बिल्ली से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे लाल रंग के जो चीज़ें हैं उनसे घबराना चाहिए। वैसे ही काली बिल्ली वाले जो हैं ये बातें भी हकीकत हैं या इसका हकीकत से कोई चक्कर नहीं, कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यकीनन इसका दूर दूर कोई चक्कर नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये एक वो तकिया कलाम बने हुए हैं और एग्जांपल्स के तौर पे लोग जब कोड करते हैं चीज़ों को तो डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी सुनी सुनाई बातें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो उसी तरह से हमारी भी स्लिप ऑफ टंग हो गई भाई, हमारी ज़ुबान से भी ये चीज़ निकल गई कि काली बिल्ली वाली बात जो है वो, कि काली बिल्ली आज सामने ना आए, आज बल्कि काली बिल्ली सामने आ जाए, आज लाल रंग का कोई चीज़ सामने ना आए। वो कहते हैं ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क। वाह जी वाह, इश्क के जो दीवाने होते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं। और उल्टी चाल से हमें याद आया डॉक्टर जूस का म्यूज़िक और साथ राहत फ़तेह अली खान, नहीं बल्कि राहत फ़तेह अली खान का गाना, और हम उस गाने को भी यहाँ पर शामिल करते हैं। ये गाना बड़ा खूबसूरत है जी, चाल मुझे बड़ा पसंद रहा। हम काफ़ी टाइम इसको ड्राइविंग के दौरान सुनते रहे, और जब तक सुनते रहे तब तक सुनते रहे जब तक हमारा जो है दिल इसे भर नहीं गया। लेकिन आज भी जब मैं सुनता हूँ तो ये गाना मेरा फेवरेट है। इसके अंदर जो बॉडी है, वो जो मॉडल है इसके अंदर, दोनों फीमेल भी मेल भी दोनों बड़े खूबसूरत हैं, और जो मेल मॉडल है उसकी बॉडी बड़ी खूबसूरत है। अगर आप लोग इसकी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं म्यूज़िक को।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रानार्स लान अली, आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर 97.1 FM और टाइम हुआ चाहता है 2:47 का। और पूरे 47 मिनट के बाद मेरी इस टिक टिकी पे जाके जो है वो नज़र पड़ी है और टाइम बड़ी स्पीड के साथ भाई 47 मिनट इतनी जल्दी के साथ गुजर गया कि मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही। यार आज दूसरी दफ़ा हुआ है। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेड फ्लैग के हवाले से है कि लाल बत्ती और सब्ज़ बत्ती जो है वो आपको कहाँ कहाँ दिखाई देती है, किस तरह से दिखाई देती है और कहाँ कहाँ पर आप जो है वो आइडिया लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है जाके मैं बच गया था, फंस गया था, यहाँ पर मुझे सिम्टम्स आ रहे थे। और अगर आपको वैसे ओवरऑल अगर बात करें ना, मुझे ये किस तरह से आइडिया हुआ कि भाई ये जो ज़िंदगी है इसके अंदर यहाँ पर मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं कि यहाँ पे मुझे डिसीजन ये वाला लेना चाहिए या ये वाला नहीं लेना चाहिए, ये जो लाल और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है इसको किस तरह से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके।

क्योंकि दुनियादारी है, लेन देन चलते रहते हैं, सबसे पहले जो मुझे ये सिम्टम्स आए, मुझे ये फाइनेंशियली ही लोगों को जजमेंट जो है मेरी स्टार्ट हुई कि भाई जब लेन देन के मामला स्टार्ट हुए कि आए रोज़ हर सेकेंड डे जब आपका दोस्त आपको बोले भाई पैसे दे दो भाई, काम नहीं है, काम नहीं है, पैसे आप देते रहो और वापसी पे आपको कुछ भी ना मिले, रेड फ्लैग है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है इसके अंदर, जनरली मैं आपको बताता हूँ, आपकी वो सोसाइटी जिसके अंदर आप रहते हैं और वहाँ पर आपकी अगर कामयाबी के ऊपर ताली नहीं बजती तो भाई रेड फ्लैग है वो भी। उनसे बच के रहिएगा, वो हसदीन है और किसी टाइम भी आप उनके हसद का शिकार हो सकते हैं, और आपने अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। बादल जी, ये चीज़ें हैं, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, कुछ इस तरह के साइन हैं जो इंसान को सॉरी इंसान को जो है बता देते हैं कि भाई यहाँ पर रेड फ्लैग है, यहाँ पर ग्रीन फ्लैग है। तो ये जो चीज़ें हैं, कम्बिनेशन इनका मिल के इंसान को एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बनाता है। अच्छा इंसान और बेहतर इंसान में दो बड़ी चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं कि इंसान को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जी, ये कहानी जो है हमारा किसी की है, और आज हम इस कहानी से रिलेटेड ये गाना भी शामिल करने जा रहे हैं कि तेरी मेरी कहानी भाई सेम सेम ही है। ये गाना है जी, इस गाने के उस पार एक छोटा सा कमर्शियल हमारा ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद जो है दोबारा से आपसे मेरी मुलाकात होगी। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि उस ब्रेक के उस पार दोबारा से आपको मेरा साथ जो है वो निभाना है, और हम दोनों मिलके, हम दोनों नहीं बल्कि आप और मैं और आप बहुत सारे, ठीक है, मिलके जो है वो गॉसिप कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बड़ी खूबसूरत हमारी डिस्कशन हो रही है। इस गाने के उस पार एक ब्रेक है, ब्रेक के उस पार दोबारा से मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा। रेडियो फदा 97.1 FM से हम दोबारा कनेक्ट होंगे।

0: It's commercial time.
1: ओखाना कराय के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौथी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: यू आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। आज खूबसूरत मौसम के साथ, खूबसूरत सी आवाज़ के साथ मैं आपके सामने हूँ आवाज़ की दुनिया में, और आपका और मेरा साथ जो है वो रहने वाला है ठीक जी 4 बजे तक। और 3 बज चुके हैं, 1 घंटे का पता भी नहीं चला कितनी स्पीड के साथ ये वक्त गुजरा। सो जी, विदाउट टाइम वेस्ट किए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए आपने करना कुछ है, 01157100971 हमारा रबते का नंबर है। मोबाइल फ़ोन उठाइए और हमें मैसेज कीजिए। ना ना, बिल्कुल नहीं, आपने फ़ोन नहीं उठाना। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप भाई ड्राइविंग छोड़ के मोबाइल उठाएं स्पेशली मुझे मैसेज करने के लिए। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दूंगा आपको।

बरल जी, इन सिम्टम्स के हवाले से आज हमारी बात हो रही थी, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल के हवाले से। तो ज़िंदगी की गाड़ी जो है उसको चलाते चलाते हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ जाता है जहाँ पर लाल सिग्नल नज़र आ जाए। बहुत सारे लोग अंधाधुंध ड्राइविंग करते हैं और उनको नज़र नहीं आता कि ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हुए भी, और एक्चुअली में भी गाड़ी चलाते हुए उनको पता नहीं चलता लाल सिग्नल जो था वो गुजर चुका है और वो आया था, हम ओवर स्पीड में थे और निकल चुके हैं। बाज़ औक़ात तो हम निकल जाते हैं और हमें बाद में फ़ाइन आ जाता है, दैट्स ओके, यहाँ तक समझ आती है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में ज़िंदगी हमेशा साथ नहीं देती, हमेशा साथ उन्हीं का देती है जो लोग अपनी नज़र को फोकस करके रखते हैं, अपनी आँखों को सामने रखते हैं और हमेशा अपने इर्द गिर्द उनकी जो है वो नज़रें होती हैं। बेशक आप ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हों या आप दूसरी गाड़ी चला रहे हों, गाड़ी कोई भी हो भाई, नज़र रखनी पड़ती है। कैसा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना मैं?

बहरहाल जी, बहुत सारे रेड जो सिग्नल हैं वो उन लोगों की तरफ से आ जाते हैं जो बार बार झूठ बोलते हैं और बार बार पकड़े भी जाते हैं। जब कोई झूठ बोले और पकड़ा जाए एक दफ़ा तो कहते हैं मौका देना चाहिए, क्योंकि मौका जो है वो ज़रूरी है। आई थिंक सो, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वैसे देखिए, हर चीज़ जो है वो इंसान की अपनी एक राय होती है, हर इंसान जो है वो अपने अंदर एक नई कहानी, नई जिंदगानी लेकर चल रहा है। हर बंदे के अपने अपने रूल हैं, अपने रेगुलेशन, अपनी रेगुलेशंस हैं, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुनर उसके पास है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इर्द गिर्द के दोस्तों के अंदर, हमारे अंदर, तो वो जो मिल मिला के जो चीज़ें होती हैं किसी ना किसी तरह से आपको वो फ़ायदा देती हैं, आपको वो पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले कर सकती हैं आप अगर सीख लेते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है जी वो स्टडी से बहुत बेहतर है, ये मेरी थॉट है। तो आप लोगों को सीखना चाहिए, जहाँ से भी आपको सीखने को कुछ मिले। ये तो हज़रत अली का भी गोल है कि आप ये ना देखिए कि आपको कौन सिखा रहा है और कौन सी अच्छी चीज़ बता रहा है, आप सिर्फ उससे वो चीज़ पिक कर लीजिए कि वो जो अच्छी चीज़ बता रहा हो, सिखा रहा हो, चाहे वो कोई भी हो। इसके अलावा जी, यहाँ पर झूठ के साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि जो जेलसी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों में पाई जाती है। जहाँ पर आपको जेलसी नज़र आए वो भी रेड सिग्नल होता है, एक लाल रंग का इशारा होता है कि भाई यहाँ से भी आपने क्या करना है, आगे आप समझदार हैं। इन जालिमों का मुकाबला करें जी। और फिर हम इस तरह करते हैं कि गाना भी शामिल करते हैं और गाने के उस पार दोबारा से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ताकि म्यूजिक का जो तड़का है वो भी चलता रहे साथ साथ। मेरे सामने है जी अरिजीत सिंह का गाना जालिमा, शाहरुख खान जो है इसके अंदर हमें नजर आते हैं। रईस मूवी है ये, रईस मूवी का ये गाना है और इसके अंदर जो मॉडल है जो एक्चुअल में इस फिल्म की जो क्या उसे कहते हैं हीरोइन, ठीक है, वो हमारी पाकिस्तान की थी।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। शो के अंदर आपको दोबारा से खुश आमदीद कहा जाता है और मुझे कहते हैं राना अरसलान अली। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो ये पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जो जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, इस पार्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अब हम अनाउंस करने जाएंगे। यानी कि मैं आपको वो चीज़ें बताने जाऊँगा कि जिसके थ्रू आपको आइडिया हो सके कि रेड सिग्नल जो है वो किस तरह से आप ज़िंदगी के अंदर लोगों में देख सकते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसी आपकी जो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए जो हिंट हैं वो आपको मैं दूंगा। वो जो चीज़ें हैं, वो जो कॉमन चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अंदर, हम आम रिलेशनशिप्स के अंदर, दोस्तियों के अंदर, रिश्तेदारियों के अंदर, वर्क के अंदर और वर्क प्लेस जो है वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कॉमनली पाई जाती हैं, ये रेड फ्लैग्स के जो सिग्नल होते हैं वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं, हर जगह पे अलग किस्म के पाए जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर जो है उन चीज़ों को मिला के, उनका जो मजमुआ है उनको कंबाइन किया गया, वहाँ पे एक जगह पे आके हम रुकते हैं और जहाँ पर आके हम रुकते हैं, स्टे करते हैं, वो जो चीज़ है वो एक कॉमन चीज़ बन जाती है कि भाई ये जो चीज़ है ये सिग्नल है एक लाल बत्ती का। लाल बत्ती क्या कहने हैं मेरे। बहरहाल जी, ये जो चीज़ें हैं ये आपको हम बताएंगे। आहिस्ता से रुको, जरा सब्र करो। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इन चीज़ों के बारे में। आपको फ्रेंडशिप के अंदर जो है वो चीज़ें, रेड सिग्नल जो है उनके बारे में, दोस्ती के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, उसके अलावा जी वर्क प्लेस जो है वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं किस तरह से ग्रो होती हैं, किस तरह से आपको आइडिया होगा कि भाई ये जो लाल सिग्नल बंदा दे रहा है, ये जो सिग्नल दे रहा है बंदा, ये लाल सिग्नल है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक मैशअप है मेरे सामने, तेरी मेरी कहानी और आशिकी 2 जो है इस सॉन्ग का, आशिकी 2 जो है मूवी का जो सॉन्ग है उसका मैशअप है, वो हम प्ले करेंगे और इस सॉन्ग के साथ साथ आगे चल के हम डेफिनेटली आपको बताएंगे इन चीज़ों के बारे में।

मत रहे इस उम्र को सलामत रखते हुए मिलेंगे इस आशिकी 2 और तेरी मेरी कहानी और सनम रे, इन सारे के मैशअप का जो इनका सारों का जो मजमुआ बना उसके उस पार।

0: वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। और अभी आप सुन रहे थे मैशअप, बड़ा खूबसूरत। और उसके बाद हम लौट कर आ चुके हैं, आपका और मेरा साथ रहने वाला है ठीक 4 बजे तक। 4 बजने में कुछ ही वक्त रह गया है और इस वक्त को हमने बड़ा इम्पोर्टेंट जानकर, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसका जो हमने रिजल्ट है वो आपके सामने अनाउंस करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारी बात हुई थी कि हम जब लोड कराएंगे गाने के बाद तो हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो डेफिनेटली आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, रिलेशनशिप को डिस्कस करना चाहिए या फिर फ्रेंडशिप को डिस्कस करना चाहिए, या फिर आप मुझे बताइए कि हमें डिस्कस करना चाहिए बिजनेस को, जहाँ पर हम काम करते हैं उस जगह के इन्वायरमेंट को, या फिर हमें कुछ और डिस्कस करना चाहिए रेड फ्लैग्स के हवाले से। ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कॉमन है, उसको डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप के हवाले से हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर आपको किस तरह से आइडिया होगा कि भाई यहाँ पर लाल सिग्नल है, यहाँ पर रेड फ्लैग है, अगला बंदा जो है वो नौटंकी कर रहा है, भाई ये वो बंदा ठीक नहीं, वो बंदा काबिल एतमाद नहीं, वो बंदा जो है वो लॉयल नहीं आपके साथ, या तो वो आपके अंदर से वो कीड़े निकालना चाह रहा है या फिर वो आपसे जान छुड़वाना चाह रहा है। तो इन दोनों सूरत हाल में कॉमन चीज़ें जो होंगी वो इस तरह से होंगी कि मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नोट करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो बार बार बार बार फ़ोन चेक करेगा, चाहे वो आपका हो या उसका हो, हर वक्त मतलब तजस्सुस में रहना भाई अपने फ़ोन को लेके, बड़ा वो मतलब ऐसे सेंसिटिव सा बन जाना कि भाई टच नहीं करना मेरे मोबाइल को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है वो उस इंसान के अंदर पाई जाती हैं जिस बंदे से इंसान को नेगेटिव वाइब्स आ सकती हैं। मेरे ख्याल से ये हतमी ऐलान नहीं, आखिरी ऐलान नहीं, लेकिन बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो हैं उनमें ये चीज़ शामिल है और ये निचोड़ है बहुत सारी बातों का। फिर सेकेंडली ये है कि जी आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ हर बात पे झूठ बोले और बात बात पे झूठ बोले और पकड़ा भी जाए, लेकिन ये आपकी सादगी हो, ये आपकी मासूमियत हो कि आप उसको बताएं ना कि भाई आपका वो वाला झूठ भी पकड़ा गया है और ये वाला झूठ भी पकड़ा गया और आने वाला झूठ भी पकड़ा जाएगा। और फिर तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र के मुताबिक वो ये है कि आपका जो पार्टनर है वो अपने एक्स के बारे में, यानी कि आपका जो सबका उसका जो फ्रेंड होता है उसके बारे में या अपने सबका पार्टनर के बारे में वो डिस्कस करे, बार बार बार बार उसका जिक्र करे, तो भाई मेरे ख्याल से ये रेड सिग्नल है और इसको भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए, उस बंदे को मतलब कट ऑफ कर देना चाहिए। मेरे मुताबिक ये कोई हतमी फैसला नहीं है, हतमी ऐलान नहीं है। फिर उसके अलावा जी मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुझे घड़ी बता रही है कि हमारा एक कमर्शियल ब्रेक आने वाला है। इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार आपको मैं बहुत सारी फायदेमंद चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो बगैर टाइम जाए कि हम मिलेंगे इस एड के उस पार, कहीं मत जाए।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है?
4: यार घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना,
6: जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ।
6: ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
8: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो 97.1 एफएम और मुझे कहते हैं राना अरसलान अली। आज हम बात कर रहे थे जी बहुत सारी चीजों के हवाले से, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हमने आज डिस्कस किए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जी आपको कहाँ पर सिम्टम्स आ जाते हैं रेड फ्लैग के हवाले से, और उनकी जो आखिर में आके लास्ट जो कि हमारा ये सेगमेंट चल रहा है, 30 मिनट्स हमारे पास हैं, उस 30 मिनट्स को हमने यूजुअली इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से हम लेकर चलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे थे कि आपको किस तरह से गाइडलाइन दी जाए, किस तरह से आपको बताया जाए, किस तरह से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएँ, किस तरह से इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो हैं उनके सिग्नल किस तरह से आपको मिलेंगे वो बताए जाएँ,

तो सबसे पहले जो हमने चीज चूज की थी, जो हमने टॉपिक चूज किया था, उसमें ये था कि जी रिलेशनशिप के हवाले से रेड फ्लैग जो है वो किस तरह से इंसान को आइडिया हो जाता है। तो उसमें हमने बातें की कि आपको किस तरह से रिलेशनशिप के हवाले में पता चलेगा कि हर वक्त जो है वो फोन को चेक करना ये एक ऐसा सिम्टम है जिसमें आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है या फिर वो आप पे शक कर रहा है। अगर तो अपना मोबाइल बार बार चेक कर रहा है तो आपको उसके ऊपर शक करना चाहिए। ये दो इस तरह की चीजें हैं जी जो आपको बता देती हैं कि कहीं तो गड़बड़ है दया, कहीं तो गड़बड़ है। और सेकंड चीज़ ये थी कि जी हर बात पर झूठ बोलना, ये भी जो है चीज़ ये रिलेशनशिप के हवाले से जो है नेगेटिव वाइब देती है और आपको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा जो है वो रेड सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर रेड सिग्नल है, हमें यहाँ पर आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो लाल सिग्नल है, लाल बत्ती जल रही है। तीसरी बात ये थी कि जी एक्स के बारे में बार बार जिक्र करना, ये भी एक ऐसी चीज़ है रिलेशनशिप के हवाले से। अगर तो आपका आने वाले

फ्यूचर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, गाइडलाइन दे देता हूँ कि भाई अगर आपका कोई पहले से पार्टनर रहा है तो आप एक नए रिलेशनशिप में जुड़ने जा रहे हैं, पुराना आपका बंदा बंदी ख़त्म हो चुके हैं, तो काइंडली आप अवॉइड कीजिए अपने पुराने रिलेशनशिप को डिस्कस करने से, बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिए उसको, बल्कि डिस्कस करें ही ना, उसको सिरे से ही ख़त्म कर दें, उस चीज़ से इनकार ही ना हो, लेकिन यस उस चीज़ से जो है आप अवॉइड करें कि उसको बार बार बार बार डिस्कस करने से। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब देती है और ये प्रॉब्लमेटिक होती है और ये कोई अच्छी चीज़ भी नहीं भाई। फिर जी रेड फ्लैग जो है हमें वो कहाँ दिखाई देता है, जहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जेलसी दिखने को मिले, वो आपसे हो, वैसे तो आपसे होनी नहीं चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे जेलसी फील ना करे, या फिर आपके जो चीज़ें हैं उनसे अगर उसको जेलसी है तो डेफिनेटली ये भी एक रेड सिग्नल है, रेड सिम्टम है, ऐसा सिम्टम है जिससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये पार्टनर जो है वो मेरे लायक नहीं या मैं इसके लायक नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिलेशनशिप के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो ये है कि जी इंसान को जब अपना फ़ायदा नज़र आए वो आपको याद कर ले, अपने फ़ायदे के वक्त आपकी याद उसको आए अगर, तो वो भी एक रेड सिग्नल है। ये तो वो चीज़ें थी जो कि आपको बता देती हैं, रेड सिम्टम्स, रेड सिग्नल जो है वो आपको दे देते हैं कि भाई रिलेशनशिप के हवाले से आपने मोहतात हो जाना है, आपने एहतियात करनी है, आपने स्टेप फॉरवर्ड करने से पहले कोशिश करनी है, थोड़ा सा होल्ड करें, देखें, समझें, सुने। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, कि जहाँ पर मैं बैठ के सोच लूँ, मैं डिसीजन लेने से पहले एक दफ़ा सोच लूँ उस चीज़ को, तो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है, और ये अल्लाह ताला ने मुझे कुदरती सलाहियत दी हुई है, इसमें मेरी कोई खास बात नहीं। बहरहाल जी एक गाना प्ले करने जा रहा हूँ, इस गाने के उस पार आपको मैं बताऊँगा फ्रेंडशिप के हवाले से रेड फ्लैग जो है, फिर हम वो जो डिस्कस करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप दोस्ती के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जहाँ पे मुझे देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो मेरा दोस्त है वो किस तरह का है, उससे ग्रीन सिग्नल आ रहा है या रेड सिग्नल आ रहा है।

बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है जी, ऐ मेरे हम सफ़र, ये मैं प्ले करने जा रहा हूँ इस गाने के उस पार। आपसे मुलाकात होगी तो आपको मैं बताऊँगा दोस्ती के हवाले से जो है वो रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM नॉटिंघम।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम नोटिंगम से लाइव। इस वक्त मैं आपके साथ हूं और वक्त का पता ही नहीं चला, इतनी स्पीड से गुजर गया। लेकिन हमारे पास चंद लम्हे हैं, इन लम्हों को जी लेते हैं। आइए मिलके हमारी बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट वेरी डीप डिस्कशन चल रही थी रेड फ्लैग को लेके, कि यहाँ पर आप कहाँ पर आपको लाल सिग्नल जो है वो मिल जाते हैं और कहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाते हैं और किस तरह से आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर लाल सिग्नल ही है। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो सेगमेंट है वो हम उसमें पहुंचे थे कि आपको हम गाइडलाइन दे रहे थे, हम आपको वो टिप्स दे रहे थे, वो हिंट दे रहे थे कि जैसे ही आपको सिम्टम नज़र आए आपको आइडिया हो जाएगा और हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल जी, हमने इस म्यूजिक से पहले, ये जो भी आपने गाना सुना उससे पहले हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप के हवाले से जो रेड फ्लैग हैं उनको, और हम गाने के बाद डिस्कस करने वाले थे फ्रेंडशिप के रेड फ्लैग्स को। डेफिनेटली हम उनको डिस्कस करेंगे वक्त को ज़ाया किए बगैर। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ख़ास, मेरे नज़दीक सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो ये है कि दोस्ती के अंदर आपको लाल सिग्नल ये मिल जाता है कि जी आपका जो दोस्त है, जो आपका करीबी है, वो आपकी प्राइवेट बातें दूसरों से करना शुरू कर दे, दूसरों से शेयर करना शुरू कर दे। ये एक लाल सिग्नल है, रेड सिम्टम है। अगर आप ऐसा कोई भी आपका दोस्त आपके गैदरिंग में पाया जाता है जो आपकी प्राइवेट डिस्कशन, जो आपकी प्राइवेट बातें, आपके जो आपके साथ डिस्कस हुई होती हैं उसकी, तो वो आपका जो राज है वो किसी दूसरे के सामने प्राइवेट बातें जो है वो डिस्कस करे, कचरा है भाई वो, उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दे। यकीन कीजिए ये रेड सिग्नल है और इतना बड़ा सिग्नल है, इतना बड़ा फ्लैग है कि भाई दूर से ही ये अपना आप बता देता है कि भाई मैं ही हूँ, मैं ही गद्दार हूँ मैं। तो ये जो चीज़ है जी, ये आपको आइडिया दे देती है कि यहाँ पर लाल सिग्नल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और वो ब्लिंकिंग करनी स्टार्ट कर देता है कि भाई ये जो है खतरे की घंटी है। इसके अलावा एक ख़ास बात और होगी उनके अंदर, ये ख़ास बात इसलिए कह रहा हूँ नेगेटिविटी में, ख़ास बात ये होगी कि वो सामने आपके स्वीट होंगे, वेरी स्वीट, वेरी डिलीशियस होंगे, लेकिन आपके पीछे वो इतनी बुराइयाँ करेंगे आपकी कि क्या ही बताऊँ, छोड़ दो जी हूँ यही दसिए तुहानू। तीसरी सबसे ख़ास, सबसे बड़ी जो रेड सिग्नल की क्या उसे कहते हैं वाइब है, वो ये है कि वो जेलसी करेंगे आपसे, आपकी सक्सेस से जेलसी करेंगे, आपकी कामयाबी पर वो उस तरह से खुश नहीं होंगे। अब ये देखें, ये चीज़ आपने खुद ऑब्जर्व करनी है कि अब ये भी आके मैं वो पकड़ के तो नहीं दूंगा भाई आपको कि ये बंदा जो है वो आपसे जेलसी कर रहा है, नहीं, आप खुद आइडिया होना चाहिए कि यार मेरी खुशी के ऊपर मेरी फैमिली किस तरह से मेरी सक्सेस के ऊपर खुशियाँ मना रही है और ये जो मेरे दोस्त हैं ये किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं। वो जो कॉमन चीज़ होती है उनके अंदर वो ये होती है कि फैमिली जिस तरह से सेलिब्रेट करती है वो खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, तो उस तरह दिल से ही दोस्तों को भी खुश होना चाहिए। अगर वो उस तरह से खुशी नहीं मना रहे तो डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर उसके अलावा जी, दोस्तों के अंदर ये भी एक चीज़ होती है कि जी जो दोस्त आपके लॉयल होते हैं वो आपको हर टाइम आपका हाल चाल, आपसे वक्तन फवक्तन, आपके आपके प्लान्स, आपकी आपकी उनके साथ गैदरिंग होती रहती है, डिस्कशन होती रहती है, आप मिलते रहते हैं, चाय होती रहती है, कॉफ़ी होती रहती है। लेकिन जो दोस्त सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे लेने के वक्त पे कॉल करे या अपनी फेवर के लिए कॉल करे या अपनी जब उसको नीड हो किसी चीज़ की तब आपको कॉल करे, तो डेफिनेटली वो भी एक रेड सिग्नल है भाई, उससे भी अवॉइड करें। इसके अलावा मैं आपको, चूंकि टाइम शॉर्ट है तो शॉर्ट दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो कल प्रोग्राम है दोबारा 2 से 4 उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे इन्हीं चीज़ों को। लेकिन आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वर्क प्लेस के हवाले से रेड फ्लैग जो है वो ये मैं बताता चलूँ कि वहाँ पर ये होता है कि जी क्रेडिट लेने वाले आपसे पहले आपके आगे आगे होते हैं, करते आप हैं दिखाते वो हैं, यानी कि हाथी के दांत बन जाते हैं खाने के और दिखाने के, और मेहनत किसी और बंदे की होती है और क्रेडिट कोई और ले रहा होता है। ये जो चीज़ है ये आपको वर्क प्लेस के ऊपर नजर आएगी। और दूसरा रेड फ्लैग जो है वो ये है कि जी बॉस के सामने कुछ होंगे और आपके सामने कुछ होंगे, यानी कि स्टाफ के सामने वो बंदे का बिहेवियर एटीट्यूड कुछ होगा और जब सीनियर आएगा उसके सामने उसका एटीट्यूड कुछ होगा। ये भी एक रेड सिग्नल है, आपको उस बंदे से भी मोहतात जो है हो जाना चाहिए, मोहतात हो जाना चाहिए। और फिर कुछ ऐसे काम आपके जिम्मे लगा दिए जाते हैं जो कि आपके लिए नहीं होते और कहा जाता है कि जी भाई ये काम सिर्फ 5 मिनट का है, कर दो ना जी, वो भी जो है रेड सिग्नल है भाई मेरे नज़दीक।
अच्छा, ये जितनी डिस्कशन आज हमारी हुई, जितनी हेल्थी डिबेट हुई, जितनी हमारी बातें हुई, इन सारे जो पॉइंट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया, ये सारी मेरी राय है। इसके आप इत्तफाक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आजमाएं, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो डेफिनेटली इन चीज़ों से अवॉइड करें। इसमें कोई पाबंदी नहीं, ना ही ये कोई स्टैंप लगा हुआ जो है वो सारी पॉइंट्स हैं कि आपने ही करना है भाई। आप इसके अलावा कुछ और भी तरीका कर, अगर आपके पास है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली हम मिलकर आजमाएंगे। बहरहाल जी, जाते जाते आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे प्यार और बहुत सारे प्यार भरे अल्फाजों के साथ आपको गुड बाय कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है आपका और मेरा यहाँ पर जुदाई का। यकीन कीजिए, पता ही नहीं चला 2 घंटे किस तरह से गुजर गए, और ये इतनी स्पीड के साथ गुजर गए कि मैंने सिर्फ 2 से 3 दफा ही वक्त को देखा। जाते जाते एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग मैं आपके नाम करने जा रहा हूँ, आपको डेडिकेट करने जा रहा हूँ। होपफुली आपको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा हल्ले गुल्ले वाला, बड़ा मजे का सॉन्ग है। तो आपने करना कुछ हुआ जी, मेरे लिए दुआएं करनी है, मेरे लिए आपने बहुत सारी दुआएं, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के शो में, ठीक 2 से 4 बजे इसी टाइम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, आपका और मेरा अल्लाह निगेबान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पार्क फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

हुई से तुमको देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदीद जी, अनुसत बिस्मिल्लाह पखैर राग ले आस्ता लवेस्ता आओ का ना दिल तराश। उम्मीद वासी का जो जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदो में मशगूल होगा। मेज़बान उस्मान खान आपके साथ प्रोग्राम ड्राइव जोन में, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ जिस हाल में भी हैं फ़िज़ा 97.1 FM की छतर छाया में आ चुके हैं। जी हाँ जनाब, नॉटिंघम और इसके गिर्दोनवा जहाँ जहाँ जिन जिन समातों से मेरी आवाज़ टकरा रही है, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने फजा 97.1 FM एंड ऐप को ट्यून कर रखा है और आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए रेडी स्टडी एप्पल गो हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप आज के प्रोग्राम में भी भरपूर तरीके से मेरा साथ निभाएंगे, अपने होने का एहसास मुझे दिलाएंगे। उन तमाम दर समातों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने आज पहली बार फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस चूज किया है या फिर आप हमें फजा डैप पर ट्यून करके बैठे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक अदद नंबर बताया जाएगा, इस नंबर को आपने नोट करना है, सेव करना है, फिर व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी पसंदीदा गजल, नज़्म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिखकर भेज देना है। हवा के दुश्मन लहराता गुनगुनाता सन सन्नाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे ही मेरा काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, हजूर सुनती हुई तमाम दर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो व्हाई यू वेटिंग, जल्दी से मोबाइल फोन उठाई और डायल पैड को ओपन करें, नंबर नोट करें, द नंबर इज 0115710091। आई अगेन रिपीट, दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115710091। अगर आप तक रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइएगा। जब तक आप प्रोग्राम में शामिल होंगे तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम आपको और भी खूबसूरत से ट्रैक्स सुनाएंगे। पहला ट्रैक तो अभी मैं शामिल करने वाला हूँ, बाकी ट्रैक्स जो हैं वो गाहे पे गाहे शामिल करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका होना बेहद ज़रूरी है। आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर भी मुझे ट्यून कर सकते हैं। सो लीजिए तमाम तर ड्राइव करते हुए हजरात के नाम ये खूबसूरत सी आवाज। इस ट्रैक उस बार होगी आपसे मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड टैब आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव ज़ोन।

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं लड़के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। हम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर 97.1 एफएम एंड डैब प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव्स ऑन। इस खूबसूरत सी प्लेलिस्ट को लेकर साथ साथ चलेंगे और आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 01157100971 पर जो व्हाट्सएप पर आप मुझे करेंगे, चाहे तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ड्राइव करने वाले हजरात के नाम खूबसूरत सा पैगाम, बी सेफ बी केयरफुल एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। सियाने लोग कहा करते हैं कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। स्पीड पे जरा हाथ होला रखिएगा और साथ साथ प्रोग्राम को भी इंजॉय कीजिएगा। एज यूजल आपको तमाम तर रूल्स तो पता ही हैं, उनको फॉलो भी करिएगा। और अगर घर की तरफ रवाना हैं तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके घर वाले आपका बेसब्री से इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ना कि किसी हादसे का। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एहतियात से ड्राइव करें और भी सेफ तरीके से घर पहुँचिएगा। और जब घर की तरफ जाएँ तो जाते हुए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर जाइएगा। कभी भी जब आप घर जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइएगा। चाहे आप एक छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना ले जाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर घर लेकर जाया करें। कभी भी खाली हाथ घर मत जाया करें। बेशक आपकी शादी हुई या नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं हैं, फैमिली मेम्बर्स तो हैं ना, किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाया करें। इज्जत भी बढ़ती है और साथ साथ मोहब्बत भी बढ़ती है। वेल जनाब, हम प्रोग्राम में जो सॉन्ग्स शामिल करेंगे आज के, वो थोड़े से मज़ेदार किस्म के तो हैं ही, लेकिन थोड़े से रोमांटिक भी हैं। और उसकी वजह ये है कि ड्राइव करते हुए ख़ास तौर पे रोमांटिक सॉन्ग्स का एक अपना ही क्या होता है, मज़ा होता है। तो आपने इंजॉय करना है ड्राइव को भी, साथ साथ प्रोग्राम को भी इंजॉय करना है और हमारी प्लेलिस्ट को भी इंजॉय करना है। मैं अक्सर औकात ये बात कहा करता हूँ कि ड्राइव का मज़ा तभी आता है जब उसके साथ हल्का फुल्का म्यूज़िक चल रहा हो, और म्यूज़िक के बगैर ड्राइव करना ऐसे ही है जैसे खाली टंकी के साथ जो है गाड़ी चलाना। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी कभी ड्राइव कर रहे हो तो हल्का फुल्का म्यूज़िक लाजमी साथ साथ सुनते रहा करें। और अगर आप फ़ज़ा 97.1 FM को ट्यून करके साथ चलते हैं तो फिर तो अब बात ही कोई और हो जाती है। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की प्लेलिस्ट चलने वाली है, तो आप जो भी फरमाइश करें कोशिश करें कि वो थोड़ी सी रोमांटिक हो ताकि मुझे प्ले करने में और आपको सुनने में मज़ा आए। फिलहाल ये खूबसूरत सी आवाज़ आप सभी खूबसूरत सी समाजों की नज़र इस आवाज़ के उस पार जब लौट कर आएंगे तो थोड़े से मोटिवेशनल बातें भी आपके साथ करेंगे ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सके मेरी इन तमाम तर बातों से। फिलहाल इस खूबसूरत सी आवाज़ को एंजॉय कीजिएगा। मूवी दिल का रिश्ता और ऐश्वर्या राय पे पिक्चराइज हुई ये खूबसूरत सी मूवी और इसके साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग भी। उम्मीद है कि ये सॉन्ग आपके कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेगा। इसके बाद आप बीट पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा। मुझे कहते हैं उस्मान खान।

0: फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके लड़के वापस से सुमित के साथ, कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मैं आपके साथ। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड डैब के लाइव शो इज ए प्रोग्राम ड्राइव सॉन्ग। एक छोटी सी प्यारी सी चुनौती उसके मशहूर ब्रेक आपने एंजॉय की और मशहूर ब्रेक के उस पार जब लौट कर आए हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं

बिल गेट्स ने किसी दौर में बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी। उसने कहा था कि कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, कामयाबी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, पढ़ने, कुर्बानी और सबसे बढ़कर जो काम आप कर रहे हैं उससे मोहब्बत करने का नाम है। हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब तभी हो सकते हैं जब जो काम हम कर रहे होते हैं अगर हमें उससे मोहब्बत होगी तो। अगर हम काम को काम समझ के करेंगे तो शायद हम सारी ज़िंदगी काम ही करते रह जाएंगे। हम जो भी काम करते हैं हमें चाहिए उसे दिल से तो हम करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी चाहिए कि हम उस काम से मोहब्बत भी करें। जब हम उस काम से मोहब्बत करेंगे तो यकीन करें कि वो काम हमें बहुत ही आसान लगेगा, चाहे वो दुनिया का कितना ही मुश्किल तरीन काम क्यों ना हो। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सिर्फ काम को काम समझ के करते रहते हैं, कभी उसे मोहब्बत नहीं करते और वो हमारे लिए दर्द सर बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि क्या आपका काम आपके लिए दर्द सर ना बने तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ यही है कि उस काम से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। दिल भी लगा रहेगा और दिमाग भी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में बल्कि आप ही के प्रोग्राम में कुछ ना कोई बात ऐसी मैं ज़रूर आपके पल्ले से बांध दूं जिसको आप अगर समझ लें तो शायद आपका दिन बन जाए और मेरे प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाए।

और बिल गेट्स ये भी कहा करते थे कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। जो लोग आपको लगता है ना कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में साथ नहीं दे सकते, आपको हमेशा बुरा समझते और आपको नाकाम देखना चाहते हैं, उनके लिए आपको कामयाब बनना है, उनके लिए मेहनत करनी है ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें, ये साबित कर सकें कि आप वेले निकम्मे बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा, परदेश की ज़िंदगी में ये भी बड़ा मसला होता है कि हमारे पास काम के अलावा कुछ होता ही नहीं है, इतना वक्त ही नहीं होता कि हम खुद की ज़ात को दे सकें। ठीक है, अच्छी बात है, कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उतनी मेहनत कीजिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी है। कभी कभार इंसान अपनी कैपेसिटी से बढ़कर मेहनत करने लगता है, फिर उसमें शायद उस मेहनत की वजह से उसे कामयाबी तो मिल जाती है लेकिन अपनी ज़ात कहीं बहुत दूर रह जाती है। देखिए, ख्वाहिशात तो कभी भी किसी की पूरी नहीं हो सकती, एटलीस्ट ज़रूरतें तो पूरी करनी चाहिए। हम अपनी बहुत सी ज़रूरतें मार देते हैं सिर्फ इस वजह से कि नहीं, हमारी वजह से जो बाकियों की ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं। अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन कोशिश ये भी कीजिएगा कि आप कुछ ना कुछ अपनी ज़ात के लिए भी कर सकें। देखिए, कब तक हम दूसरों को खुश करते रहेंगे? अपनी भी एक ज़ात होती है, अपनी एक ज़िंदगी है, अपने आपके साथ जुड़ी जो आपकी अपनी शख्सियत होती है ना, उस शख्सियत के लिए भी कभी कुछ करने का सोच लीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे एक और खूबसूरत सी आवाज़, आप तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नज़र इस आवाज़ के उस पार होगी। आपसे फिर से मुलाकात, और यह आवाज़ है जनाब मेरे उन तमाम तर दोस्तों के नाम जो जिनका ताल्लुक किसी न किसी अरब ममालिक से है। जी हाँ, अरबी सॉन्ग शामिल कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस अरबिक म्यूज़िक के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड

जी हाँ जनाब, आपने सुना एक बड़े खूबसूरत सा अरेबिक म्यूजिक। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। हाँ, बस आपकी पसंद की खातिर उस्मान खान हल्की फुल्की मेहनत जो है वो करते ही रहते हैं, तो बस आज की मेहनत रंग ले आए ये मेरे लिए काफ़ी है। आपको पसंद आ जाए मेरी प्लेलिस्ट तो मेरे लिए बस यही बहुत है। और जनाब, आप लोग मेरे साथ साथ हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं और आपने बस मेरे साथ साथ चलना ही है। चलने से बल्कि याद आया, वो कहते हैं ना, हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा राहे हिदायत पर चल पड़े। सही रास्ते पर चलना ज़रूरी है, चाहे आपके साथ कोई चले या ना चले, आप अकेले हों या पूरा काफिला आपके साथ चले, फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि चलने वाली रास्ता जो है वो हिदायत का होना चाहिए, सही और सीधा रास्ता होना चाहिए। और आप दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाएंगे तो यकीन करें कि आपकी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता जाएगा। जब भी कभी आपको लगता है कि वो शख्स मुश्किल में है, चाहे वो आपका जानने वाला है नहीं है, आपसे उसके कोई मरासिम है या नहीं है, लेकिन अगर वो किसी मुश्किल में है और आपके हाथ में है कि आप उसकी मुश्किल दूर कर सकें, तो ज़रूर उसकी मुश्किल दूर किया करें। बिना ज़रूरी नहीं कि हर काम किसी लालच के बिना पर किया जाए कि कुछ ना कुछ हासिल हो तभी हम कुछ करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आप कोशिश करें कि अगर आपकी वजह से किसी की मुश्किल आसान हो सकती है और आपका इसमें कुछ नहीं जाता, तो यकीन करें कि यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आप किसी की मुश्किल आसान करेंगे तो कल कला जब कभी आप किसी मुश्किल का शिकार होंगे तो आपकी मुश्किलें भी इसी तरह से आसान कर दी जाएंगी। वो कहा था ना किसी ने कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। कभी कभार कुछ मुश्किलात आपके मुकद्दर का हिस्सा होती हैं जिनको हर सूरत निभाना होता है। एक सियाने ने कहा था कि वक्त है गुजर जाएगा जैसा भी होगा। तो जब कभी आप किसी मुश्किल वक्त में होते हैं तो आपको चाहिए कि इस बात को मद्देनजर रखना कि जो भी है जैसा भी है आपके मुकद्दर का हिस्सा था यह वक्त, और इस वक्त ने एक दिन गुजर जाना है। थोड़ा वक्त लग जाता है वक्त को गुजरने में, लेकिन यकीन करें कि बुरा वक्त अपने साथ साथ अच्छा वक्त भी लेकर आता है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आपकी आधे से ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो वैसे ही आसान हो जाएंगी, आधे से ज़्यादा परेशानियाँ आपकी वैसे दूर हो जाएंगी। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि इस मुश्किल वक्त के बाद आसान वक्त ने आ जाना है। ये खूबसूरत सी आवाज़ आप सभी खूबसूरत सी समातों की नज़र कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस आवाज़ के उस पार फिर से मुलाकात होगी। मेरे साथ साथ रहिएगा, मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 FM नॉट ही कम के लाइव छोटे से प्रोग्राम ड्राइव टाइम।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रासिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
6: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
11: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी हाँ जनाब, बड़ी खूबसूरत सी आवाज के उस पार लुट कर आ चुके हैं। एक और खूबसूरत सी आवाज सुन रहे हैं आप, इसको कहते हैं उस्मान खान की आवाज। लाइव स्टूडियो से बंधन चीज उस्मान खान प्रोग्राम ड्राइव जोन में तमाम दर सुनती हुई खूबसूरत सी सवालों को वेलकम कहेंगे जो अभी अभी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और शामिल होने के लिए आपने एक अदद नंबर को सेव करना है, फिर व्हाट्सएप पर जाकर मुझे अपना पैगाम पहुंचाना है। नंबर है जनाब 01157100971। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर जाइएगा और अपना खूबसूरत सा पैगाम विद योर नेम भेज दीजिएगा। बात कर रहे थे जिंदगी के हवाले से और उसके साथ साथ कामयाबी और भी बेतहाशा बातें आज हमने की हैं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कभी किसी भी जिंदगी के सफर पर निकलते हैं तो जरा मजबूत रहिएगा और साबित कदम रहिएगा। जनाब जिंदगी है ये कोई माँ की गोद नहीं कि आप पर तरस खा लिया जाएगा। इस जिंदगी में रहने के लिए इस जिंदगी के असूलों पर अमल करना पड़ेगा और इस जिंदगी को गुजारने के लिए इसके साथ साथ कदम मिलाना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप आराम सुकून से घर में बैठ जाएं और आपकी हर जरूरत और ख्वाहिश का ख्याल रखा जाए। काम तो करना पड़ेगा और कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राजी कर ले। इब्तदा कीजिए छोटे से ही सही, लेकिन शुरुआत तो कीजिए ना, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी का राज मुसलसल मेहनत में है। उम्मीद है कि मेरी एक भी बात अगर आपके पल्ले से बन गई तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी और मेरा प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बात ही नहीं हो सकती ना। बातें कम और काम ज्यादा करिए, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जितना ज्यादा दिखाई देगा उतनी ज्यादा आपकी इज्जत पड़ेगी, सुनाई कम कम लोगों को देता है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर अमल करना छोड़ दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल था कि हर सुनी हुई बात को बयान ना करो, वरना तुम्हारी बेवकूफी के लिए यही बात काफी होगी।

लेकिन जनाब आपने मेहनत करते हुए कामयाबी की तरफ जाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि कामयाबी या तरक्की के जो सीढ़ियां होती हैं चढ़ते हुए आपने अच्छा सलूक करना है नीचे वालों के साथ, क्योंकि नीचे उतरते हुए आपको उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। जो आज आप देंगे कल को वही आपको लेना पड़ेगा। तो जितना अच्छा लोगों के साथ रवैया इख्तियार करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रवैया आपके साथ किया जाएगा। कामयाबी की पहली मंजिल यही है कि खुद पर भरोसा रखिएगा, मेहनत को अपना जेवर बना लीजिएगा, दुनिया खुद आपके लिए रास्ता छोड़ेगी। अव्वल जनाब इन तमाम तर बातों के साथ एक और खूबसूरत सा म्यूजिक आपके समातों के मुंतजिर है। इस खूबसूरत सी आवाज के उस पार होगी आपसे मुलाकात। धरेंद्र मूवी से लिया गया यह खूबसूरत सा ट्रैक लुट ले गया उन तमाम तर समातों की नज़र जो इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ रहिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited, Tamited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: बहन बहुत बहुत मुबारक हो, बारको बारको बारको बारको। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07070707096804046444 या 011591168231। कुछ बन गया आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes.
8: You are listening 97.1 FM.

कैसे मतलब से बात करें तन हर रात आत आत आत और यार यार यार तेरी इस कश्म में चाहे दिन या शाम पूरी काया नात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मरना पाए जी के भी करना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of a...
10: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: परियां।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करे। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से प्रिसे क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर पूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट खुशबूदार और रवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब साइक्योर बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह साढ़े नौ बजे से रात साढ़े दस बजे तक विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07 07 07 07 07 07 5 93 13 13 13 150 669। राया रेस्टोरेंट जहाँ हर मील पन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियां लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियां, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट 126-132 ग्रैसिंगटन रोड NG8 3P नॉटिंघम मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM संडे 10 AM to 8 PM अरियाना सुपरमार्केट फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Pop लाखों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डिकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.